0: Mountain passes, Zola, Rizala, Pukurla, and Thagla. By permanently embedding these names into public government records, India has completely left China high and dry, invalidating Beijing's fictitious Zhangnan naming campaigns.
1: Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India.
0: Predictably, Beijing went into absolute overdrive, with its foreign ministry labeling India's sovereign mapping as illegal, null and void. But on the 11th of August, MEA spokesperson Randhir Jaiswal pulled no punches. Jaiswal firmly reminded the international community that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India. Made it crystal clear that Beijing cannot call the shots on sovereign Indian territory, dismissing China's manufactured narratives as completely baseless.
1: Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India, and this is a fact which is self-evident. At the same time, let me also underline that nothing can change this indisputable reality.
0: This diplomatic showdown lands right on the heels of tense border reports alleging brief PLA patrolling face-offs in the upper Subansiri district. India's messaging at the latest diplomatic rounds was entirely uncompromising. The MEA delivered a blunt ultimatum. Beijing cannot run with the hare and hunt with the hounds. Jaiswal reiterated that maintaining absolute peace and tranquility on the line of actual control is the mandatory prerequisite. The health of larger bilateral ties relies entirely on a peaceful border. India's legal maps are heavily backed by physical concrete and steel on the ground. Through the hyper-accelerated frontier highway project and the critical all-weather Sela Tunnel, New Delhi proves it is always a step ahead of any expansionist designs. Under the targeted Vibrant Villages program, frontier outposts like Malja and Bisa are fully fortified. 80 years into its independence, a modern, resolute India stands tall, proving its territory is completely non-negotiable. We report NDTV World.
2: Make no mistake, the days of India merely reacting to expansionism are dead and buried. Beijing can keep churning out its fictional maps, but maps don't change ground realities. Concrete, steel, and boots on ground too. 80 years of hard-fought independence and freedom have taught this nation one clear lesson. You do not negotiate with a dragon. You simply build a fortress that it can never breach. Arunachal was, is, and always will be part of India, period. All right, on that note, a quick break. We return with more on the other side.
3: एनडीटीवी और एनडीटीवी के तमाम दर्शकों को एनडीटीवी के रीलॉन्च होने पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, विश्वास रखता हूं कि जिस तरीके से एनडीटीवी ने निरंतरता में स्पष्ट सही जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम किया, आगे भी उसी जिम्मेदारी से ये इस उत्तरदायित्व को निभाने का कार्य करेंगे।
4: मैं एनडीटीवी और उनके दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम विकसित भारत कैसे बने, हमारे विकसित गांव कैसे बने, उस दिशा में एनडीटीवी अपने पॉजिटिव व्यूज और हमेशा सार्थक रहेगा।
5: कंग्रेचुलेशंस एनडीटीवी ऑन योर न्यू अवतार, ऑलवेज स्टैंड अप फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी।
6: माय बेस्ट विशेस टू एनडीटीवी एज ऑलवेज, एंड आई एम श्योर इन द न्यू फॉर्मेट पीपल विल गेट इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इंफॉर्मेटिव न्यूज।
7: आई विश द एंटायर एनडीटीवी एंड इट्स टीम ऑल द वेरी बेस्ट।
8: आई विश NDTV and the whole team and all the viewers the very best.
9: For NDTV परिवार को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई।
10: NDTV team all the very best.
11: Electricity bill paid.
12: Really?
11: Your mobile recharge is done. How?
12: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
11: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
13: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।
14: सबका राजा आके और मसाला।
15: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
16: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
17: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
18: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ
19: हेलो एंड वेलकम टू वॉचिंग प्राइम टाइम विथ हरीशा सेगर और सैंडी
18: द शो दैट सेट्स द प्राइम टाइम एजेंडा
19: विल बी डीप डाइविंग इनटू दिस टॉपिक टू टेल यू व्हाट्स एट स्टेक
18: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV.

0: झंडा तोलन किया पहले वंदे मातरम हुआ, पूरा गाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उसको रोका। ये बहुत दुर्भाग्य।
1: कानून के हिसाब से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, हम मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
0: वो नियम के हिसाब से सभी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया है, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास हो
1: जी,
0: तो कार्रवाई तो होगी।
2: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पे जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पे विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
3: तो भी बीच में
2: एक एक कांग्रेस नेतृत्व मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का भी रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादरे वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादरे वतन है, तो हम उस मादरे वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं।
4: For 80 years, the Congress party has only played vote bank politics. They could not even say Vande Mataram proudly. And now, when they want votes in the name of Tiranga, they play a narrative which is shameful. I think that any person who does not sing the national song with respect only shows you that they are only playing vote bank politics. And real patriotism is when you sing a song called Vande Mataram with pride. And maybe Mr. Gandhi and Mrs. Gandhi both must apologize to the nation, because Tiranga yaad karna hai to shuruaat hoti hai Vande Mataram se.
5: Dekhiye, rashtriya dhwaj aur rashtriya geet ka apman maujooda Congress party ki pehchan ban chuka hai. Rashtriya geet hai, aur rashtriya geet ko agar humne purn roop se bahal kiya hai to wo har jagah par पूरी तरह ही बजेगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। केवल कुछ कट्टर पंथियों को लुभाने के लिए, केवल कुछ कट्टर पंथियों को साथ रखने के लिए अब वो राष्ट्रीय गीत का भी अपमान कर रही
6: है। जिस प्रकार से सम्मान में सावधान खड़े होना चाहिए, उनमें से एक भी खड़ा नहीं था। बातें कर रहे थे, घूम रहे थे, और इतना ही नहीं है, खड़गे साहब ने बाद में जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने बहुत कहा कि हमने देश को ये दिया, हमने देश को ये दिया, हमने देश को ये दिया, पर वो ये नहीं बताते कि उन्होंने देश के साथ क्या किया। भारत का विभाजन किया, करोड़ों लोगों को बेघर किया, 10 लाख लोग मारे गए, ये भी तो कांग्रेस ने किया।
7: और लेट्स नॉट टेक यू टू कर्नाटका। नाउ द कांग्रेस वर्सेस आरएसएस शोडाउन इज नाउ एस्केलेटिंग। इन द लेटेस्ट द कर्नाटका होम मिनिस्टर प्रियंका खड़गे हैज टारगेटेड द आरएसएस, अक्यूजिंग इट ऑफ क्रिएटिंग कम्युनल राइट्स। ही फर्दर आस्क्ड एंड आई कोट, व्हिच फ्रीडम स्ट्रगल डिड द आरएसएस पार्टिसिपेट इन? रिब्यूकिंग द क्रिटिसिज्म ऑफ द अपकमिंग पब्लिक प्रॉपर्टी बिल, खड़गे सेड दैट द बीजेपी हैज प्रियंका फोबिया। He further said that the bill doesn't name any specific organization or claim to ban anyone. He further claimed that the controversy is unwarranted and that the bill draft isn't out yet, and that as Home Minister, he is responsible to regulate public spaces. He even went on to say that he is only following the court's orders. We're tracking some more updates coming in at this hour, this time from Tamil Nadu. Naina Nagendran, the BJP chief in Tamil Nadu, has stoked a controversy with his remarks on the Tamil Nadu chief minister on Independence Day. Reacting to Chief Minister C. Joseph's Where's Your Father slight at the DMK leader Udhanidhi Stalin, referencing MK Stalin after the poll loss, the BJP politician made an unsavory remark. He said that some are searching for a father, but only by asking the mother at home can one know who the father is. The remark drew a scathing response from the TVK, which demanded an immediate apology, calling Nagendran's language low class and crossing all political boundaries. After backlash, the Tamil Nadu BJP chief issued a clarification saying that his intent was not to hurt anyone and that he respects all mothers and even the motherland.
3: करना चाहिए।

0: एनडीटीवी की पूरी टीम को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि वो जिस तरीके से जनता की आवाज़ बन करके अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिस तरीके से वो हर खबर को और हर कहानी को जनता के बीच लेके जाते हैं और उत्साहजनक तरीके से अब वो ये काम करेंगे। ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई।
1: एनडीटीवी का नया रूप नए भारत की बदलती हुई तस्वीर है और इस नए रूप के लिए मैं एनडीटीवी की पूरी टीम को बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो सफलताओं को, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं।
2: एनडीटीवी हैज बीन अ लेगेसी नेटवर्क। जेनरेशंस हैव ग्रोन अप वॉचिंग एनडीटीवी एंड नाउ दैट इट इज कमिंग इन अ न्यू अवतार वी वेलकम इट एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द नेटवर्क।
3: NDTV has always brought the big stories closer to the people. This new avatar is fresh, dynamic and contemporary. My best wishes to the entire team of NDTV.
4: मैं NDTV के टीम को और NDTV के दर्शकों को बहुत बहुत

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
4: रियली
3: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
4: How?
3: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
4: It's the Mahi way.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आके और मसाला।
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
10: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ
2: हेलो एंड वेलकम टू वाचिंग प्राइम 5 विद रेशा सहगल और सैंडी
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5.

0: Let's take you through the top story of the hour. At the Congress headquarters in Delhi on the Independence Day, the version of Vande Mataram was sung and it triggered a huge political controversy. The political fight erupted after a video showed Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and even Rahul Gandhi making gestures while the rendition continued. The BJP alleged that the leaders were signalling for the song to be stopped, alleging that the Congress party till date resists the full redemption of Vande Mataram. The BJP even says that the Congress party has insulted the national song. Now the Congress party has denied any such attempt, saying that Sonia Gandhi was only asking for a chair for Mallikarjun Kharge, who had been standing for all this while. The footage subsequently sparked a wider political row over Congress's position on the full rendition of the national song. Here's what both sides are saying. Listen in.
1: हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
2: 1937 28 अक्टूबर कलकत्ता का CWC रेजोल्यूशन में स्पष्ट जो हमें

0: से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, आप मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए?
1: वो नियम के हिसाब से सारी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया है, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास हो
0: जी,
1: तो कार्रवाई तो होगी।
2: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पर विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
3: तो भी बीच में
2: एक, एक, कांग्रेस नेतृत्व मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का भी रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादर वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादर वतन है, तो हम उस मादर वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं।
4: For 80 years, the Congress party has only played vote bank politics. They could not even say Vande Mataram proudly. And now, when they want votes in the name of Tiranga, they play a narrative which is shameful. I think that any person who does not sing the national song with respect only shows you that they are only playing vote bank politics. And real patriotism is when you sing a song called Vande Mataram with pride. And maybe Mr. Gandhi and Mrs. Gandhi both must apologize to the nation, because Tiranga yaad karna hai to shuruaat hoti hai Vande Mataram se.
5: Dekhiye, rashtriya dhwaj aur rashtriya geet ka apman maujooda Congress party ki pehchan ban chuka hai. Rashtriya geet hai, aur rashtriya geet ko agar humne purn roop se bahal kiya hai to wo har jagah par पूरी तरह ही बजेगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए, केवल कुछ कट्टरपंथियों को लुभाने के लिए, केवल कुछ कट्टरपंथियों को साथ रखने के लिए अब वो राष्ट्रीय गीत का भी अपमान कर रही
6: है। इस प्रकार से सम्मान में सावधान खड़े होना चाहिए, उनमें से एक भी खड़ा नहीं था, बातें कर रहे थे, घूम रहे थे, और इतना ही नहीं है, खड़गे साहब ने बाद में जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने बहुत कहा कि हमने देश को ये दिया, हमने देश को ये दिया, हमने देश को ये दिया, पर वो ये नहीं बताते कि उन्होंने देश के साथ क्या किया। भारत का विभाजन किया, करोड़ों लोगों को बेघर किया, 10 लाख लोग मारे गए, ये भी तो कांग्रेस ने किया।
7: Alright, like we've been discussing all morning that this has created a huge political controversy. Let's also take you through how exactly it is that the controversy unfolded. Remember that the new guidelines came in on Vande Mataram. It was also conveyed to the Congress. This is information coming to us from sources within the Congress party. Instructions were sent to the state Congress offices as well. So all party offices had an instruction to, of course, play the full song, the full rendition of Vande Mataram. And the full version was sung at the Indira Bhavan. Not just at the Indira Bhavan, the full version was also sung at 24 Akbar Road. And it's important to understand that while this happened, Congress leadership was unaware of the change. Remember, in the video as well, you can see a confused Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi. The party, however, still maintains that they were just trying to get a chair for Mallikarjun Kharge, who had been standing for all this while. The BJP, remember, has lashed out at the Congress saying that they were trying to stop the rendition of Vande Mataram from playing, and they still do not accept the new version. So while this occurred, the top leaders were, remember, caught off guard, and the full rendition played. This full rendition, like I said, sparked confusion at the Congress headquarters, owing to which, of course, we've also seen videos come out of the event. And Congress sources even say that there were efforts allegedly made to halt the full version that was playing. Sonia Gandhi, we've been told, maintains the stance, as per sources, that only the 1937 Congress Working Committee adopted version should be sung. So she says that the version that was adopted by the Congress previously is one that should be sung at such events, and that the Congress is only going to sing two stanzas at future events, is what we've been told that the leadership has eventually decided. My colleague Himanshu now joins us on the broadcast to break down the details for us. Himanshu, you know, help us understand, where does the Congress currently stand, especially on this controversy, and with regard to the Vande Mataram, are we going to see them sing the full Vande Mataram or only two stanzas of it?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: Electricity bill paid.
6: Really?
5: Your mobile recharge is done.
6: How?
5: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
6: It's the Mahi way.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये ही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा प्योर मसाला।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: मैं NDTV की पूरी टीम को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं कि वो जिस तरीके से जनता की आवाज़ बन करके अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिस तरीके से वो हर खबर को और हर कहानी को जनता के बीच लेके जाते हैं और उत्साहजनक तरीके से अब वो ये काम करेंगे, ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई।
1: NDTV का नया रूप नए भारत की बदलती हुई तस्वीर है और इस नए रूप के लिए मैं NDTV की पूरी टीम को बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो सफलताओं की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं।
2: NDTV has been a legacy network. Generations have grown up watching NDTV and now that it is coming in a new avatar, we welcome it and wish all the very best to the network.
3: NDTV has always brought the big stories closer to the people. This new

0: Avatar is space, dynamic and contemporary. My best wishes to the entire team of NDTV.
1: मैं NDTV के टीम को और NDTV के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत

0: निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
1: 1937 28 अक्टूबर कलकत्ता का CWC रेजोल्यूशन में स्पष्ट जो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का, वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए।
2: लाल किला पर वंदे मातरम गाया गया, दोनों विपक्ष के नेता वहां नदारद थे और पूरे देश में जहां भी झंडा तोलन हुआ पहले वंदे मातरम गाया गया। हमने भी अपने निवास पर झंडा तोलन किया, पहले वंदे मातरम हुआ, पूरा गाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उसको रोका। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण।
3: कानून के हिसाब से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, हम मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
2: वो नियम के हिसाब से सभी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया है, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास हो जी, तो कार्रवाई तो होगी।
4: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पर विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
5: तो भी बीच में एक कांग्रेस नेतृत्व,
4: मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का भी रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादरे वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादरे वतन है, तो हम उस मादरे वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं।
6: For 80 years, the Congress party has only played vote bank politics. They could not even say Vande Mataram proudly. And now, when they want votes in the name of Tiranga, they play a narrative which is shameful. I think that any person who does not sing the national song with respect only shows you that they are only playing vote bank politics, and real patriotism is when you sing a song called Vande Mataram with pride. And maybe Mr. Gandhi and Mrs. Gandhi both must apologize to the nation, because Tiranga yaad karna hai to shuruaat hoti hai Vande Mataram se.
7: Jis prakar se samman mein saavdhan khade hona chahiye, उनमें से एक भी खड़ा नहीं था। बातें कर रहे थे, घूम रहे थे, और इतना ही नहीं है, खड़गे साहब ने बाद में जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने बहुत कहा कि हमने देश को ये दिया, हमने देश को ये दिया, हमने देश को ये दिया, पर वो ये नहीं बताते कि उन्होंने देश के साथ क्या किया। भारत का विभाजन किया, करोड़ों लोगों को बेघर किया, 10 लाख लोग मारे गए, ये भी तो कांग्रेस ने किया।
8: Back with us, Himanshu, an apology is being demanded. Are the hand gestures of Rahul and Sonia Gandhi being misread in this whole controversy?
9: Well, I think the most important thing that has come out is that very top Congress leaders have spoken about the October 1937 resolution of the Congress Working Committee, which stayed and mandated that only 2 stanzas of Vande Mataram should be played out. What is significant is that it's been more than 8 decades since that resolution was passed. And today, of course, the ground reality has changed. There is a law that has been passed by Parliament that those who disrespect Vande Mataram should be penalized. There are very stringent provisions incorporated in the law that has been passed in the recent monsoon session of Parliament. There is a government order which mandates that in all important programs, the full Vande Mataram must be sung. So in that context, I think there are very clear contradictions in the Congress stand, and the kind of discomfort that we see in the video that BJP has released clearly shows

0: और उनके दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम विकसित भारत कैसे बने, हमारे विकसित गांव कैसे बने, उस दिशा में NDTV अपने पॉजिटिव व्यूज और हमेशा सार्थक रहेगा।
1: कंग्रेचुलेशंस NDTV ऑन योर न्यू अवतार। Always stand up for freedom and liberty.
2: My best wishes to NDTV as always, and I'm sure in the new format people will get even more interesting and more informative news.
3: I wish the entire NDTV and its team all the very best.
4: I wish NDTV and the whole team and all the viewers the very best.
5: For NDTV परिवार को मैं अपनी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ।
6: NDTV team, all the very best.

0: Tamil Nadu, but with the support of Congress and other parties. But DMK continues to target TDK government, saying that Congress pressurized Vijay over various issues, especially after Meghadatu and Kaveri water issue. DMK targets TDK, calling that as it is under pressure from the Congress as Karnataka is ruling by Congress government. On the other hand, you know, there were speculation in past recent days saying that BJP is trying to have alliance with DMK. There are talks has already begun. Even DMK leader made it clear they are continue to have a secret relationship. Now they are started to reveal their relationship. Now only DMK is reacting to this, saying that they are not in alliance with BJP. There are no possibility also for such alliance, but Congress only creating such kind of drama by using TDK. Both are TDK Solomon goes on to say, saying that TDK is under Congress pressure. That's why he is saying something. TDK lacks ideology and self-thought, and also inexperienced voters elected Vijay. That's a remark towards voters. But they have given a people mandate. The TDK got 107 seats, and they formed the government. They are going to complete 100 days of governance in Tamil Nadu. On the other hand, DMK also continues to target TDK for political reasons. Vidya.
1: Right. Thank you so much, Vijay, for getting us a very latest from Tamil Nadu. Let's just cut across to the BJP. Pradeep Bhandari holding a press conference.
2: और दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता का दृश्य हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा. The opposition of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi on the day of independence of Vande Mataram points towards the mindset of a Dimagi Naxal ecosystem mindset. Dhyan se aap dekhiye, kyunki iske baad kai Congress party ne spashtikaran dene ka prayas kiya. Main frame by frame aapko ye batana chahta hoon. कि कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए, और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है. अगर आप देखेंगे ध्यान से उस वीडियो को, जब वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ. वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए. फिर जब वहां पे नहीं सुना जाता है, फिर वो वापस से दूसरी बार इशारा करती है और कहती है कि रुकना अनिवार्य है. उसके बाद में वो उनको कहती है कि पीछे जो बैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक ऐसी व्यक्ति का दृश्य है जो इतना गुस्से में है कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरी तरीके से कैसे गाया गया, तो वो इंडिकेट करती है और उंगली के तरी धमकी देने की कोशिश करती है. जब वहां से सब कुछ नहीं सही होता, तो फिर वो राहुल गांधी की तरफ देखती है और बाकी के जो कांग्रेस नेता उनके साथ में खड़े हैं उनकी तरफ देखती है और अपना गुस्सा प्रकट करती है. मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, अरे कांग्रेस पार्टी, भारत का ही उद्घोष हो रहा था, वंदे मातरम का ही उद्घोष हो रहा था, इतनी विपत्ति या इतना आक्रोश जब कांग्रेस पार्टी की रैलीज और कांग्रेस पार्टी के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे तब इनकी लीडरशिप को करते हुए नहीं देखा, पर जब कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा था तो सोनिया गांधी एजिटेटेड ही नहीं थी, गुस्से में ही नहीं थी, वो ऐसे प्रकट कर रही थी जैसे अपराध हो गया. द एक्शंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी पॉइंटेड टुवर्ड्स अ साइकी ऑफ अ दिमागी नक्सल इकोसिस्टम विच बिहेव्ड एज इफ अ क्रिमिनल एक्ट वॉज कंडक्टेड इन द कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स. ये यहीं तक नहीं रुके. उसके बाद जब वंदे मातरम का उद्घोष कंप्लीट होता है, ये लोग साथ में मिलते हैं. यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे, खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, और सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं, और मैं आपको एक प्ले करना चाहता हूं. कोट अनकोट राहुल गांधी कहते हैं, वी डोंट नीड टू सिंग, वी डोंट नीड टू सिंग.

0: वंदे मातरम। पहले तो राहुल गांधी जी, ये कोई गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्घोष है। ये इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो पेट्रियोटिज्म का भाव है वो है। उसके बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने गुस्से में रहते हैं कि राहुल गांधी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग ही गाता है और हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग का ही उद्घोष करता है, पर यह मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है जिसको हम दिमागी नक्सल कांग्रेस मानसिकता कहते हैं। जिस मानसिकता में इनको वंदे मातरम का विरोध करना होता है, जिस मानसिकता में पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल कहते हैं, क्योंकि हिडमा जैसे नक्सल आतंकवादी का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है, यही वो मानसिकता है जिसमें आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये वो मानसिकता है कांग्रेस की जिसमें जब भी देशहित की बात होगी कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा, जब भी रेड फोर्ट पे पूरे वंदे मातरम का उद्घोष होगा तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस्सा कुर्सी का में इसको स्किप करेंगे, बिकॉज देयर हार्ट डज नॉट बीट फॉर द कंट्री, देयर हार्ट बीट्स फॉर फ्रिंज फोर्सेस। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है केरला के अंदर, कल ही कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने वंदे मातरम के उद्घोष को एज ऑफिशियल फंक्शन स्किप किया। सो जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सोचा उसको लेटर और स्पिरिट में कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने इंप्लीमेंट किया। तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह कोई इत्तेफाक नहीं था, और कांग्रेस पार्टी का जितना जस्टिफिकेशन है वो इस बात पे झूठ साबित होता है कि उनकी खुद की सरकार, जहां पे उनकी सरकार है केरला के अंदर, वहां पे वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं और वंदे मातरम को स्किप करते हैं। और राहुल गांधी उसके बाद इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि जोर जोर से सोनिया गांधी के साथ में चिल्लाने लगते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। दोस्तों, मैं एक और फंडामेंटल सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश के पार्लियामेंट ने अभी अभी एक एक्ट पास किया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एज अमेंडेड इन 2026, जिसमें वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का विरोध करता है तो वो इस एक्ट का भी विरोध करता है। सो जब वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत है तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जानबूझकर इसका विरोध कर ये दिखा दिया कि वो फ्रिंज फोर्सेस के साथ में खड़े हैं, और जो फ्रिंज फोर्सेस के साथ में खड़ा होता है वो हमेशा इस बात पे गुस्सा होता है कि कोई भी उद्घोष जो भारत को आगे ले जाने की बात करता है उससे उसको विरोध होता है।
1: Pradeep Bhandari of the BJP there, you know, targeting Sonia Gandhi and Rahul Gandhi and the gestures that were made and saying that their heart doesn't bleed for the country and so on and so forth, while attacking them, including Mallikarjun Kharge, at what happened on Independence Day when, you know, the version of Vande Mataram that was sung, it was a full version that was not the norm during the Congress's regime. With that, we're slipping into a short break. Back with a whole lot more on the other side. Do stay with us.

0: the choices that they have. And therefore, the numbers have gone down. Are we huge advocates of breastfeeding? We are, but we are larger advocates of normalizing it. We're advocates of the fact that we need to have more and more conversations around it. More importantly, not sexualize it. You know, this is not a thing that you need to... I remember that it was about when our daughter was like 8 months old and I was just like, where do I go and feed? And we were in a mall somewhere and they were like, yeah, Carlo, bathroom mein. Why? So, you know, you need the conversation to normalize it. And the more you normalize it, it just enables women to do it more. So workplaces, for one, or just bouncing back to work and then saying that, okay, I can express and then I can make sure that I could go back and, you know, feed my children. So there is a balance, and one way or the other, you need to find it.
1: Actually, very true. I mean, we need to normalize it because it's something which every mother, like you said, of course, it's a choice. One wants to do it because of certain reasons. I'm sure, I mean, Dr. Claire would agree on that. But before we move on, you know, to ask about breastfeeding, I think, Ayushman, you have, a more important question.
2: Of course, Dr. Claire, stunting, wasting has reduced, but malnutrition is still a huge challenge. Ek taraf kuposhan hai, dusri taraf obesity or lifestyle diseases hai. So India's double burden of malnutrition ka samna kaise kare?
3: हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ मैलनरिश्ड चिल्ड्रन जो स्टंटेड होते हैं, वेस्टेड होते हैं. स्टंटिंग ऑफ कोर्स लाइफ लॉन्ग आपकी हाइट छोटी हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा है ये जो लोग सिवियरली वेस्टेड होते हैं, उनका इम्यून स्टेटस पुअर होता है, डिजीज़ की ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंड डेथ विथ सिवियर वेस्टिंग there is more risk of death. But fortunately, agar hum NFHS, that's National Family Health Survey ka data dekhen, 5, jo 5 saal purana hai, aur 6, jo recent hai, kuposhan kam ho gaya hai. Stunting and severe marasmus, severe wasting jo hai, wo kam ho gayi hai. Lekin ek caveat hai isme, ek isme chupa hua raaz hai. कि स्टार्वेशन इंडिसेस अभी भी कम नहीं हुए हैं. जब हम 6 महीने से 24 महीने, विच इज़ लाइक इन्फेंसी, उनकी डाइट देखते हैं तो वो डाइट पुअर है. उसका एक कारण है कि ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स कम आ गए हैं. हम उस मुद्दे पे जाएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स क्यों कम हो गए. बहुत सारे नेहा जी ने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किए हैं, कुछ अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और कुछ वैसे. लेकिन ये 6 महीने से 24 महीने तक जो पीरियड है, जैसे डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये 1000 डेज हैं, फर्स्ट 1000 डेज हैं, विच इज़ अ विंडो टू द ब्रेन डेवलपमेंट. सो ये बच्चे जो हैं जिनकी ब्रेन डेवलपमेंट, बिकॉज उन्हें खाना तो मिल रहा है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जिस तरह से मिलनी चाहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी या न्यूट्रिएंट रिच खाना जो है वो नहीं मिल रहा है, तो इनकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं अच्छी होगी. तो कुछ एक इंडिसेस, हेल्थ इंडिसेस, जो हमें ये बताते हैं कि देर हैज़ बीन स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 90% चली गई हैं, इसका मतलब लोगों को फेथ हो गया कि अस्पताल में डिलीवरी करनी है, घर के अंधेरे कमरे में औरतें नहीं डिलीवर करती हैं. बच्चों को पहले 2 दिन पैदा होते ही देखा जाता है. न्यूनेटल मोर्टैलिटी नीचे आ गई है, इम्यूनाइजेशन रेट्स ऊपर चले गए हैं. लेकिन आई थिंक द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. एंड एक जो नारा हमने दिया कि इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, रीच ऑफ द हेल्थ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, रीचिंग इंटरवेंशन, लाइक हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं, इम्यूनाइजेशन एक इंटरवेंशन है. मैंने अचीव कर लिया 80%, 90%, लेकिन न्यूट्रिशन किसने देनी है? मदर ने. और मदर क्या है कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, छोटा बच्चा, तो चलो उसे दूध पिला दो, बट दूध कंप्लीट फूड नहीं है, पूर्ण आहार नहीं है. और क्या होता है कि विशेष सर्कल है कि बच्चा खाता नहीं है, उसे दूध दिया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, अनीमिया हो जाता है. और अनीमिया जो है एक बहुत बड़ा हर्डल है फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट. हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट मदर्स, इन्फेंट्स में इंसिडेंस ऑफ अनीमिया बहुत हाई है. अनफॉर्चुनेटली NFHS 6 में अनीमिया का डेटा अभी नहीं आया, लेकिन वो देखना बहुत ज़रूरी होगा. सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि कुपोषण की रोकथाम तो हुई है,

0: उसे नीचे तो ले आए हैं, स्टंटिंग को नीचे ले आए हैं, लेकिन अगर आप बड़ा बारीकी से देखें तो अभी जो क्वालिटी ऑफ डाइट उस पीरियड में जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ब्रेन डेवलपमेंट होती है, अभी भी इनएडिक्वेट है। और क्या होता है कि अगर बच्चा ठीक से डेवलप नहीं होता है न्यूरोलॉजिकली या फिजिकली, देन दे आर नॉट प्रोडक्टिव टू द फैमिली, टू द कंट्री, एंड दैट्स अ लॉस फॉर द कंट्री।
1: डॉक्टर क्लेयर वेरी वेल
0: फोकस
1: सेड।
0: ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ दीज फर्स्ट 1,000 डेज, व्हिच इज अ विंडो टू द ब्रेन डेवलपमेंट, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैमिलीज, फॉर द इंडिविजुअल्स, फॉर द कम्युनिटीज टू नो, एंड फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। आई वुड जस्ट ऐड दैट यू नो वी हैव टू बिकम वेरी वेरी नेचुरल एंड कंफर्टेबल अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, यू नो लाइक।
2: Yes, I can't agree. Sorry, I'm interrupting, but that's why normalizing it. It's just like, even when I was talking about it excessively, it's just like, क्या जरूरत क्या है बात करने की? आई फील लाइक अगर आवाज है उठाओ, यूज इट इन द राइट डायरेक्शन, एंड आई फील लाइक यू ऑल्सो बिकम अ वॉइस फॉर मल्टीपल पीपल, एंड द सेम वे वन दे लुकिंग एट यू, यू लाइक अगर ये बोल सकती तो मैं भी बोल सकती हूँ इसके बारे में। एंड देर वॉज सो मच चेंज दैट आई सीन इन द 9 years। आई मे हैव स्टॉप फीडिंग माई किड्स, बट देर आर सो मेनी कॉन्वर्सेशंस दैट
3: कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग, राइट? आई मीन
2: यस,
3: इम्पोर्टेंट और
2: एंड हाईलाइटेड इन सो मेनी डिफरेंट वेज। इट्स जॉयस। देर आर टाइम्स वेन आई वेक अप एंड यू नो वो कहते हैं ना, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया इज लाइक अ वॉर्टेक्स, इट सक्स यू इन, और नहीं खोलना चाहिए बिकॉज कोई उठ के योगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यू लाइक अभी 9 बजे अपने कुछ नहीं किया। बट व्हेन आई ओपन द फ्रीडम टू फीड पेज, आई गेट डीएम्स एंड आई सी मम्स हु आर लाइक दे रीच आउट और दे टॉक अबाउट देयर जर्नी और कितना उनको फर्क पड़ा, हाउ दे हैव गॉन बैक टू वर्क, और इवन कॉर्पोरेट सेटअप्स दे लाइक ये देखने के बाद 3 साल बाद पहले बच्चे के वर्क कॉर्पोरेट सेटअप्स में नहीं था ब्रेस्ट फीडिंग रूम, अब है, एंड आई एम होपिंग एनडीटीवी हैज वन।
3: गेस वुड
2: Great. It's so great to hear that NDTV has a breastfeeding room and
3: it's very important.
2: It's crash. It's very important.
3: Because it is important. I mean, as mothers, right? I mean, self-care is important. You don't want to have the guilt feeling. I think we've all been through that stage.
2: Yeah.
4: It's more in the urban area.
2: Yes, that's where.
4: Area, nobody looks at a breastfeeding.
2: Yeah. It's, they are more empowered there.
3: Yeah.
2: Bilkul theek keh rahe hain aap. I just feel like even in rural areas, they're so empowered. Matlab wahin pe, like even if you go to a tea plantation, wahin pe they're feeding their kids, wahin pe, wahan pe, पीछे लगा लिया बच्चे को, फिर काम पे चल गए। ये जो बाधा है, अड़चन है, इंटरप्शंस हैं, ये होती नहीं है। फील लाइक आई एम नॉट सेइंग इट्स स्मूथ एज बटर, बट देयर इज अ ह्यूज माइंडसेट चेंज दैट नीड्स टू कम एंड इट्स कमिंग इन हियर नाउ।
3: इट्स द 12th सीज, आई मीन फिनाले है, और आज इंडिपेंडेंस डे के दिन हम ये चर्चा कर रहे हैं। फ्रीडम हमारा जरूर हो गया आयुष्मान, वी टॉक अबाउट कॉलोनियल रूल, वी मे बी अ फ्री कंट्री, बट व्हेन इट कम्स टू डिजीजेज, यस, नंबर्स हैव इंप्रूव्ड, जैसे डॉक्टर क्लेयर ने काम ने पहले भी नंबर्स देखे थे, बट स्टिल वी हैव अ लॉन्ग जर्नी टू गो। असली फ्रीडम क्या होती है? जब व्हेन एवरी चाइल्ड, वी इंश्योर एवरी चाइल्ड हैज फूड टू ईट, एंड देयर सो मेनी एस्पेक्ट्स, वेदर इट कम्स टू एजुकेटिंग एवरी चाइल्ड, द बेसिक राइट, साफ पानी होना चाहिए। तो जर्नी ऑफ कोर्स चल रही है, एंड दैट्स द रीजन आर कैंपेन इज बिन ट्राइंग, यू नो, ओवर द लास्ट 12 years, दैट्स व्हाट वी बिन ट्राइंग टू फोकस, टू इंश्योर दैट फ्रीडम फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ।
2: यस, आई रियली थिंक सो, दैट फ्रीडम फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू बेसिक राइट्स, लाइक यू सेड, यू नो, वेदर इट्स शेल्टर, वेदर इट्स क्लीनलीनेस, वेदर इट्स फूड, वेदर इट्स वैक्सीनेशन, वेदर, यू नो, जो भी हो, बट इट शुडंट बी कि इस बच्चे को मिल रहा है और इस बच्चे को नहीं मिल रहा है, यू नो, इट्स द एक्सेस टू इट और द रूट टू इट और व्हाटएवर। आई फील लाइक children all across should be given basic food, medical aid. It needs to get to the most grassroots level, and no one should be left in a space where they can't achieve it or they can't have it.
1: Yeah, aapko is baat ko dekhkar acha lagega ki we are not just even talking about this grassroots level par jo insaan kaam kar raha hai wo hai Ravi Bhatnagar, aur 10 saal ye kya karte aaye hain. It's been 12 years now, looking back at 12 years of banega Swachh India journey, and how has this 2014 launch of Swachh Bharat Mission shaped its impact? And what lessons do you think stand out? कि collaboration between a public campaign और national policy में है, कितना आगे बढ़ के लेके आया आपके लिए?
5: Thank you so much, Ayushman, for asking this question. But first thing first is thank you NDTV as a wonderful partner to us. Voices do matter. And the decibel also matters. I am well aware, like, you know, there is a long way to go, but our each brand we work with at Reckitt tries to give the health in people's hand. And I remember the launch of Banega Swachh India, and then the transition from Swachh to Swasth. I really feel like, you know, a lot has gone into shaping the work across India, and I'm very proud. Like, we have around our work in more than 350 plus aspirational blocks in India right now. And all the work is intertwined. It's not a standalone hygiene program. It's not a standalone sanitation program. It's not a standalone breastfeeding program. But the work focuses on the health outcomes. And when I say about the health outcomes, like, you know, like Neelam ma'am, you just spoke about the first 1,000 days. Neha ma'am, you just spoke about, you know, breastfeeding. Damodaran sir has been working tirelessly on the sanitation. You have been lending us the voice and increasing the decibel. And Ambika being a wonderful anchor. You know, when we started our journey, we were just in 2,500 schools. And there was a big challenge, like how we make sure our work stays. And the nudges are so strong. We touch around 1.4 billion people across India. The interventions designs are made in a way where the interventions are nutrition sensitive interventions. The interventions are not just nutrition specific interventions, which also have something like, you know, basic things like kitchen gardens. You have the breastfeeding pods, Nehaji, if you remember, like we discussed it yes. in the past. Then we talked about, like, you know, we saw the numbers of the urinary tract infections among the girls in the schools and in the absence of the toilets and the clean toilets. And we saw, like, you know, every girl, every boy should have the full potential to achieve. And if we do our efforts towards Viksit Bharat, there'll be more players, more sportsperson, more youths who will be more healthier. There'll be better health outcomes for the country. And overall, on the Human Development Index, the country will move up. A very small example I want to give you. Studies say if, you know, most of the girls who are getting trained for the sports, they don't reach to the podium. It's not just because of the opportunity, it's also lack of sanitation and hygiene. Because you drink less water. You don't pee. You feel like, you know, the safe toileting also becomes gives a pushback to move. Your body is cramped, you are dehydrated, you want to win. And we really want, like, girls, boys equally and all need to reach to the podium. So all these efforts, you know, first 1,000 days, then, you know, the work what we do with the youth, the work we do on hygiene, sanitation, self-care, this all pushes and elevates the stature of, the public health in India. There are some direct interventions and which are clinical, and there are certain which are non-clinical in nature. There's a lot of focus what we have put on the preventive health in India. And I really think, like, preventive health is a big foundation. Otherwise, the big hospitals, especially the tertiary care, will be fulfilled with the long queues of people who will be unhealthy in the times to come.
2: True.
5: Again, you know, I just want to take a pause because I just see this at the background, Swasth Bharat, Viksit Bharat. The definition of Viksit is also freedom from hunger, freedom from disease. It's improvement in the HDI. It's how the personal disposable incomes of the people actually grow. It's out-of-pocket expenditure on the disease actually reduces. And there are around many other indicators.
3: True.
5: So
3: in fact, what you said, I think preventive rather than curative, that's the way to go forward. Lekin jab what happened in 2014, if you just revisit, jab Pradhan Mantri ne Lal Kila se Swachh Bharat ka sankalp kiya, tab mission bahut seedha tha. India ko open defecation free banana. अब और उसमें देश ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव भी किया, करोड़ों में शौचालय बने और 2019 तक भारत ने खुद को ओपन डेफिकेशन फ्री अनाउंस किया।
1: लेकिन फिर फोकस बदला, क्योंकि सवाल उठा, क्या सिर्फ टॉयलेट बनाना ही स्वच्छता है? अगर गांव में कचरा पड़ा रहे, नालियों में गंदगी हो, पानी जमा हो, तो हेल्थ रिस्क वापस आ सकते हैं। इसीलिए शुरू हुआ नेक्स्ट फेज, ओपन डेफिकेशन प्लस।
3: सही कहा आयुष्मान। और ODF प्लस यानी कि ओपन डेफेकेशन प्लस का मतलब है ना सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति, बल्कि पूरे गांव को साफ, सस्टेनेबल और गंदगी से

0: फ्री बनाना। चलिए देखते हैं एक जर्नी जो 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था और आज हम कहां तक पहुंचे हैं।
1: 2 अक्टूबर 2014 लाल किला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया।
2: पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, फिट इंडिया क्लीन इंडिया।
1: लक्ष्य था खुले में शौच को खत्म करना और हर घर तक शौचालय पहुंचाना। अगले कुछ सालों में देश भर में करोड़ों शौचालय बने, लेकिन ये सिर्फ टॉयलेट्स बनाने की कहानी नहीं थी, ये लोगों की जिंदगी बदलने की कहानी थी। 2019 भारत ने खुद को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया। सैनिटेशन की जर्नी में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन, और इस बदलाव का असर हेल्थ पर भी नजर आया। बेहतर सैनिटेशन और हाइजीन ने डायरिया जैसे इन्फेक्शंस का बोझ कम करने, बच्चों को बेहतर शुरुआत देने, महिलाओं की सुरक्षा और डिग्निटी बढ़ाने और गांव में स्वस्थ जीवन की बुनियाद मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। आज स्वच्छ भारत सिर्फ सफाई का मिशन नहीं, एक हेल्थ मिशन भी बन चुका है। एक ऐसा आंदोलन जिसने दिखाया कि जब सफाई और सैनिटेशन बेहतर होती है तो देश भी ज्यादा स्वस्थ बनता है।
3: Let's go across to an Indian public health specialist, scholar, environmentalist, and 2014 recipient of the Padma Shri, Dr. Indira Chakravarti, who has been an integral part of a campaign since we launched it. Dr. Chakravarti, you have witnessed decades of change in the public health space. When we talk about freedom from diseases and the pursuit of better health, what milestones have we truly achieved?
4: Aushwal, I think that's in a way a very easy question and a very difficult question to answer. Because if you compare between the NFHS fight, which was 2019 to 2021, and NFHS 6, which was 23 to 24, we do find some significant achievements. For example, ARI, acute respiratory tract infection, which is the highest killer disease in children, has come down from 2.8 to 1.9%. Severe diarrhea has also come down from maybe 0.7 to 0.5%. Reduction in diarrhea has just made a very small dent, hardly anything, 7.3.

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
1: 21 days in Kashmir. People have bombarded me, friends, with requests for an unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
2: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
1: They're now India's smallest but possibly the most powerful crime family. Cough syrup has killed at least 25 children. Suddenly, people are wondering about the weaponization of India-Pakistan cricket. We live and breathe elections. You will not believe your eyes or ears when I show you what I'm about to do.
3: And for a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
1: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
2: The line of control, Shivarur, NDTV.
0: A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha. Ideas across borders. The Nepal Dialogue. 27th August. Kathmandu, Nepal. A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Sishir Khanal, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Sashi Tharoor, Actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, commerce, security, infrastructure, tourism, soft power. NDTV Anviksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
4: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
5: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
6: वेलकम बैक. आप देख रहे हैं एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन का इंडिपेंडेंस डे सीजन 12 फिनाले और चर्चा हो रही है ऑन फ्रीडम फ्रॉम इलनेस.
7: Exactly, Ayushman. Freedom from illness is not just a human right, it's an economic imperative. In fact, diarrhea is the largest contributor among waterborne diseases, which together caused about 17 million cases between 2021 to 2025. Acute diarrheal disease remains a leading cause of child mortality under the age of 5 in our country, unfortunately.
6: Yes, Ambika. So every child saved from preventable diseases like diarrhea is not only a life preserved, but a future contributor to the nation's growth. Diarrhea ek aisi bimari jo roki ja sakti hai, lekin aaj bhi hazaron bachon ki jaan le leti hai. Saaf pani, sanitation, hygiene aur timely intervention. Ye sab badal sakte hain tasveer. Aur yahi BSI ka mission raha hai.
7: Absolutely. Ram, since we are talking on these critical conversations, Dr. Claire, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे diarrheal disease जो deaths हैं बच्चों में, they've reduced, right? But जो neonatal hospital infections हैं, that is still a big challenge. Whether it's hand washing, whether it is, you know, the conditioning in hospitals, training, how can we bring about a change in that aspect as well to protect our children?
8: So infections in the newborn, they account something like 1/4 of the total deaths. So if there are, let's say, 60,000 deaths, out of that, about 20% is because of infections. And the reason behind infection are multiple. Ek to inherent hai ki newborn jo hai usme immune status poor hota hai. So usse bimari se ladne ki itni shamta nahi hoti hai. On top of that, you know, जो sick babies हैं, जो intensive care units में हैं, उन पे बहुत सारे procedures होते हैं, और उनकी वजह से they are more prone to have infections. But even जो बच्चे healthy हैं, normal हैं, अगर cleanliness नहीं होती है, cleanliness at the time of delivery, labor room में, afterwards, if the healthcare professionals are not washing hands, if the women are not washing hands, they are not hygienic, they are not taking baths. Another thing which is predisposing is increasing rates of cesareans. The cesarean rates are alarmingly increasing. You know, WHO says that, you know, 10 to 15% are their normal rates. If they go beyond that, then it is a surgery which is harmful to the mother and the newborn. But unfortunately, our cesarean rates are to the tune of 40%, even more than 40%, to the tune of 60%, 70% in private facility as compared to the public health facilities. So combined with all this, if we do not maintain the hygiene, if we do not have proper facilities for hand washing with soap and water, then this, I mean, something which is very simple.
7: In fact, hand washing सबसे simple और सबसे effective तरीका है.
6: बिल्कुल.
8: One way of preventing infection.
6: Yes. So hand washing सबसे simple है, hand washing simplest भी है और सबसे powerful tool भी है. Breaking the cycle of diarrheal disease in India and globally.
7: In fact, the connection is very direct. Contaminated hands spread pathogens into food. They spread into water. They fuel outbreaks, and we've seen that. You know, we've seen it very closely. Regular hand washing with soap can reduce diarrheal cases by up to 40%, making it one of the most cost-effective public health interventions.
6: As India work towards the goal of freedom from illness towards a Viksit Bharat, ma'am, aap bataiye ki aur kya additional steps lene chahiye jo bachcho ko protect kar sake.
8: Right. Aapne baat ki ki bhook se mukti, freedom from hunger. I think today the question is not of availability of food. It is of the right choices. And I'm not only talking about adults, I'm talking about children also. You know, I work in a rural area of Rajasthan. There's so much of malnutrition. And the reason is that women don't have time to cook because wo jungle mein jaake lakdi chunti hain. Aur bachchon ko pata kya milta hai? Parle ji aur kurkure aur chips. So it's the choice of the, kyunki micronutrient deficiency, which is anemia, I'll again and again hamper, because that's very important for the brain development. Agar aap hari sabziyan nahi khate hain, चावल आटा दाल की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन हरी सब्जी की कमी होती है किचन, हरी सब्जी बनाने की कमी होती है. इवन पीपल हु आर अफ्लुएंट घर पे खाना भूल गए हैं, दे ईट मोर ऑफन आउटसाइड, एंड मेनी अ टाइम द चॉइसेस आर अनहेल्दी. सो आई थिंक राइट फ्रॉम बिगनिंग द राइट चॉइसेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन हाइजीन, हाइजीन इंक्लूडिंग योर पर्सनल हाइजीन और योर टॉयलेट हाइजीन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शुरू से बच्चों को स्कूल से ही सिखानी चाहिए कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना है. इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल इनिशिएटिव बाई द स्कूल प्रोग्राम्स ऑफ स्वच्छ बनेगा भारत. सो बिकॉज यू नो इफ यू पुट समथिंग इन अ चाइल्ड्स माइंड विल नेवर फॉरगेट. अनदर थिंग विच हैज हैपन्ड विच इज गोइंग टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन इज द एजुकेशन ऑफ द मदर.
7: Yes.
8: Enabling them to be more digital friendly. One thing which has come up in NFHS 6 is that the number of women who are internet friendly has increased. Women who have independent, their bank account has increased. So like the social securities and the welfare schemes, they come straight to the mother.
7: Yeah, which actually...
8: So there are no patriarchal gatekeepers.
7: I think an important point here, of course, we're talking about, you know, whether it's mothers, fathers, all of us play a critical role in bringing out good children, future citizens of our country. Lekin ab hum diarrhea ki baat kare, to chahe diarrhea ho ya COVID jaise challenges, I want to here put out ek aisa network hai jo har din ladta hai, jo hamari ASHA workers hain.
6: Wo ek healthy India ke soldiers hain. Aaj hum unse milenge, unke kids dekhenge aur samjhenge ki unhone apne gaon mein kya badlaav laaye.
7: So if we can please have the ASHA workers join us here today, I think, please aaiye ma'am. So Ravi, humne dekha hai, we've all seen, I think during COVID, the critical role they've played, and not just, I think, COVID, the World Health Organization has also felicitated them and seen the kind of work. They really are the thread to ensure that community healthcare reaches these ASHA workers. In fact, hum aapse kuch charcha karna chahenge, if you can share with all of us, aap jo kaam ground par karte hain, ghar ghar jaake, us kaam ke baare hum sabko zara bataiye.
9: Okay. First of all, thank you to my NDTV and thank you all of you for calling us here. I'm feeling very honored. Thank you so much for this opportunity. हम लोग BMC से हम लोग एज अ हेल्थ वर्कर हम लोग काम करते हैं आशा वर्कर के तौर पे. आई एम वर्किंग सिंस 12 इयर्स इन द BMC. वी आर वर्किंग लेवल स्लम्स में हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं. हम लोग चाइल्ड एंड वीमेन जो होते हैं उनके हेल्थ के लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशंस हो गए. देन मैम ने जैसे बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है तो उनके उन्हें हम लोग बहुत सारे मतलब फर्स्ट वीक से लेके उनके एंड तक जितना उनका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन रहता है तब तक हम उनको बहुत सारे सलाह देते हैं, बहुत सारे उनके जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं, बहुत सी चीज़ें रहती है लाइक प्रेगनेंसी से लेके बच्चा कंसीव होने से डिलीवरी तक जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग उनको. मैम ने जैसे बताया ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, ये इम्पोर्टेंस हम लोग उनको समझाते हैं. और बच्चों में मैल न्यूट्रिशन ना हो इसके लिए हम लोग उनको हेल्थ टॉक वगैरह देते हैं. और बहुत सारी, जैसे अभी बारिश का मौसम है तो सीजनल जब होते हैं सीजन्स, बारिश का मौसम होता है तो बारिश में बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, तब हम लोग बहुत एक्टिवली हम लोग काम करते हैं उसमें भी, बारिश में भी. ऐसे बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि अभी पोलियो, रिसेंटली पोलियो है तो आशा वर्कर्स एंड जो उसकी CHVs है, कम्युनिटी हेल्थ वॉलेंटियर्स, उनकी वजह से आज हम वी कैन से प्राउडली कि हमारी वजह से आज भारत पोलियो मुक्त होने जा रहा है या फिर हो रहा है.
10: थिंक वी नीड टू, या
9: सो आई एम वेरी,
7: आई थिंक नहीं आप कह सकते हैं, आई मीन आई थिंक नहीं, आई मीन यू कैन डेफिनेटली से दैट. हमने देखा कि जितना काम जो हमारे पूरे देश में ये आर्मी ऑफ आशा वर्कर्स, हमने कह सकते हैं सोल्जर्स ऑफ आशा वर्कर्स है. इनफैक्ट द सैनिटेशन वर्कर्स हैव ऑल्सो प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल. और इंडिपेंडेंस डे में वी डोंट हैव अ सैनिटेशन वर्कर अनफॉर्चुनेटली जॉइनिंग अस, बट दे बीन पार्ट ऑफ अवर कैंपेन, दे हैव प्लेड अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल. इनफैक्ट
9: वी डू सो मैन ही डिड अ.
7: पर चैलेंजेस क्या आते हैं आपके?
9: चैलेंजेस में बहुत सारे होते हैं लाइक समटाइम्स पीपल जो होते हैं हमें रिस्पांस अच्छे से करते हैं. कुछ कुछ लोग होते हैं जो सीधा विदाउट आस्किंग एनीथिंग, उनको लगता है कि हम लोग कुछ सेल करने के लिए है तो सीधा दरवाज़ा मुंह पे बंद कर देते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं हम फेस करते हैं, बट वी डोंट बॉदर अबाउट इट. हमें, हम घर से यही सोच के निकलते कि नहीं हम आज हमें कुछ करना है, हम सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं एंड हमें करना है, दैट्स इट. हम बाकी की जो चीज़ें हमें रुकावट देती है उनको हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे काम में, जैसे बहुत सारा वर्क प्रेशर भी होता है कि एक काम करते तब दूसरा कॉल आ जाता है कि आपको ये भी करना है साथ में. अभी बारिश का मौसम है तो बहुत वाटर लॉगिंग वगैरह हो रहा है तो उसमें लोग जाते हैं, तो उनके प्रिवेंशन के लिए उनको लेप्टोस्पायरोसिस या ऐसी कुछ बीमारी ना हो तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हम लोग उनको डॉक्सी की मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते, तो हमें फिलहाल हम लोग ये कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, बट हम ज्यादा उनको भी
7: बॉदर नहीं करते, आप बैठते चले जाते हैं. आई मीन फ्रॉम NDTV डिटॉल, हम सबकी तरफ से आज यहाँ जो बैठे हैं, वी हैव गॉट पद्मभूषण, पद्मश्री, वी हैव गॉट नेहा, आयुष्मान एंड रवि जो ग्राउंड पर काम करते हैं, थैंक यू. हम यू नो दिल से आपको धन्यवाद करना चाहेंगे.
6: बट बिफोर वी एंड दिस सेगमेंट,
7: करना चाहेंगे
6: right? आज हम इंडिपेंडेंस डे पर हमारे हीरोज को एक स्पेशल पिन देंगे, बनेगा स्वस्थ इंडिया ऑनर्स. ऑल द आशा वर्कर्स विल बी गेटिंग दैट पिन, द स्वस्थ आजादी पिन. ये उनकी कंट्रीब्यूशन का सल्यूट है. लेट्स वेट फॉर
7: आज pin. हमारे साथ यहाँ पे चार आशा वर्कर्स है, बट हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे दिस इज फॉर द All the ASHA workers, in fact, are working tirelessly in our country. Can we please have the pins? And can I please request you all to please pin them? I can think we can start with you, Dr. Claire. You can pin our first worker. And Saeed Amodan ji, aap bhi aaiye. And I will, I think, start with please.

0: NDTV and Viksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
1: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
2: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
3: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
4: so many attacks,
3: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break live.
1: Welcome back. आप देख रहे हैं सीजन 12 फिनाले एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन का ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है लेकिन नाउ इट्स टाइम टू स्विच गियर्स थोड़ा फन थोड़ी मस्ती एंड थोड़ा सा नॉलेज क्योंकि आज हमारे साथ है आयुष्मान जो क्रिएटिव भी है थॉटफुल भी हैं रोडीज के विनर भी रह चुके हैं और दूसरी तरफ है नेहा धूपिया रोडीज से लेकर रियल लाइफ तक मुझे पता है दोनों बहुत कंपेटिटिव है सो आई ऑल रेडी फॉर दिस तो हमने सोचा व्हाई नॉट टेस्ट कौन ज्यादा जानकार है हेल्थ और सैनिटेशन पर दिस इज अ बजर राउंड वेयर वी हैव अ क्विक फायर यू नो रैपिड फायर क्वेश्चंस ऑन हेल्थ हाइजीन एज वेल एज एनवायरमेंट सो आयुष्मान एंड नेहा यू गाइस रेडी दोनों के साथ आप देख सकते हैं हमारे पास तीन छोटे छोटे बच्चे हैं आई मे बी थिंकिंग छोटे देखते कितने नॉलेजेबल हैं दे आर यंग चैंप्स ऑन ईच साइड सिंपल रूल्स सवाल होगा हेल्थ और हाइजीन से जुड़े और आपको बजर दबाना है द मिनट यू ऑल नो द आंसर रेडी Ready for it?
5: Ready guys, say yes.
1: बच्चे आप ready हो? Thumbs up? Okay, पहला सवाल, कौन सी habit illness से बचने में आपको help करती है? Soap और, अरे सुन तो लो पहले, दोनों को बैठे
6: नहीं नहीं नहीं। illness से बचने के लिए हम
1: answer सुनो तो सही। Soap और पानी से हाथ धोना, meal skip करना, toothbrush क्या था?
5: ये बच ही नहीं रहे।
6: Soap और पानी से हाथ धोना।
1: Okay, that goes to her.
5: But ये बजे तो सही ना?
1: ओके ओके ये कैसे बजर फिर से टेस्ट करिए मैं
6: नहीं वो
1: आयुष्मान चीटिंग 1 point गॉन
6: बजर कैसे दबाते हैं लेफ्ट हैंड से
1: ओके पहला पॉइंट
6: या बहाने मार के
1: ओके पहला पॉइंट यहां का आयुष्मान रेडी फॉर द नेक्स्ट वन हाथ कब धोने चाहिए खाने से पहले और टॉयलेट के बाद
5: मैं आंसर दे दूं
6: बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग
1: ओके सो
5: अरे
1: नो
5: जी नहीं रहा है
1: बच्चे आप ट्राई करना बजर शायद आयुष्मान का हाथ उनको अच्छा
5: नहीं मनुष्य है
1: नहीं शायद ना आप दबाना ठीक है बच्चे ओके सो नेहा इज टू आयुष्मान इज येट टू खाता शुरू होना बाकी है तीसरा सवाल है हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए
5: 20 seconds.
1: Okay, आयुष्मान का था.
5: Listen, come on.
1: ये तो ही इज कैंपेन एम्बेसडर ये तो पता
5: अच्छे बच्चों की तरह बजर दो बार दबा चुका आंसर भी मुझे पता था
1: ओके
6: उससे ज्यादा तो उनके बजर दबाने में लगता है 20 सेकंड
1: ओके चौथा सवाल कौन सी चीज ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचाती है ऑप्शन सुन लीजिए क्या आंसर है बताइए अनयूज्ड अप्लायंसेस स्विच ऑफ करना सब कुछ को ऑन रखना फ्रिज बार बार खोलना
5: अनयूज्ड अप्लायंसेस स्विच ऑफ करना
6: टाइम
5: पर बजर नहीं दब रहा हमारा
1: ओके दिस इज अ टाई फेयर एनफ
6: क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं और अप्लायंसेस नहीं दबा रहे हैं तो ये पॉइंट भी उनको दे दीजिए
5: चलो चलो
1: टू ऑल
5: थैंक यू
1: पांचवा सवाल एनवायरमेंट के लिए कौन सा बैग बेटर है रीयूजेबल क्लॉथ बैग सिंगल यूज प्लास्टिक कि हर बार नया पेपर बैग
5: रीयूज़ आंसर देने दो यार नेहा
1: इनको बोलने दीजिए
5: रीयूजेबल
1: बाइक उठा के बोलो
5: बाइक उठा के
1: रीयूजेबल बैग ओके सो 3, 2, 6 क्वेश्चन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बच्चों ये आपको जीतना पड़ेगा ये वाला सवाल
5: पहले ही दबा के बैठी है औरत
1: ये मैंने पहले ही बोला था कि बहुत
6: कुछ आपके ऑप्शन से मेरे को आंसर पता चल जाएगा ना
1: शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चे बाइसिकल कार मोटरसाइकिल
6: बोलते दिया हो गया रिकॉर्ड हो भी क्या हमारा आंसर रिकॉर्ड हो गया आप अगले सीजन में आइएगा बजर दबाने
5: हमारा बजर खराब है ये चेंज करो यार
1: बच्चे दबा के देखो
6: ये बाइसिकल वाला हमें मिला
5: अरे

0: Just press yours, check करिए.
1: Press, press.
2: आयुष्मान, there's something wrong with your I swear.
3: इन्होंने हाथ नहीं धोए ना, वो बजर बहुत
4: हाथ नहीं धोए आली.
3: हाथ धोना जरूरी है. मैं हाथ धो के
2: इसमें तो मैं दो बार चेक कर रही हूँ, चल रहा है. ओके
1: थैंक गॉड, ये तो चल रहा है.
2: नहीं वो भी चल रहा है.
3: राइट वाला हाथ धोया है ना.
2: नेक्स्ट सवाल गाइस, कम ऑन. नेक्स्ट सवाल, नेहा 4 आयुष्मान 2. बच्चों आपको नेक्स्ट वन लेना पड़ेगा. प्लास्टिक बॉटल्स का क्या करना चाहिए?
1: रिसाइकल करना चाहिए प्लास्टिक बॉटल्स.
3: ये पसंद नहीं था ब्राव.
1: This is karma,
2: you
1: guys.
2: Think there is...
1: और उड़ाओ मजाक.
2: That's the fun of this. That's the fun of this. 3 and 4. Brushing के वक्त पानी कैसे बचाना चाहिए?
3: Options
2: पीछे हैं. देखिए पानी कैसे बचाना चाहिए. टैप बंद करना चाहिए. टैप चलता छोड़ देना चाहिए. एक्स्ट्रा पानी
3: बंद करना चाहिए.
1: यार बच्चों
2: टैप बंद करना चाहिए.
3: आप बोलिए. ये मेरा ही
2: उठा के बोलिए. No, he she said it.
3: टैप said
2: it before.
1: इतना फोमो ठीक नहीं है.
5: करना चाहिए.
3: Very good.
2: Rashini.
3: क्या सवाल?
2: Answer.
3: जवाब दिए क्या? Wow.
2: Very good. बच्चे आपका नाम?
6: इशिता.
2: So इशिता got it right.
3: किस स्कूल से आप?
6: प्रभा देवी.
3: क्या बात है?
2: Okay. वेस्ट कम करने के लिए क्या करना चाहिए? आप पीछे ऑप्शंस भी देख सकते हैं.
3: दे दिया, दे दे दे दिया.
2: बताइए.
3: दिया मैंने, बजर दबा दिया.
2: Reuse और
1: एक बात बताओ, ये इस साइड में प्रॉब्लम है, यहाँ बजर दबे.
3: Reuse, recycle.
2: ये सब
3: आप बताइए, आप बताइए. आप जो मैंने बोला वो बोल दे.
1: इनको भी चांस दो बोलने का, हमारे बच्चों को.
3: हाँ बोलिए जोर से.
6: रियूज रिसाइकल.
3: क्या बात है.
2: रिसाइकल करना चाहिए. ओके नेक्स्ट वन आपको आंसर करना है. ये जो आपका नाम बताओ. ही इज ऑल एक्साइटेड. आयुष्मान यू नीड टू मेक श्योर यू प्रेस द बजर बिफोर आई फिनिश द क्वेश्चन. प्लैनेट के लिए कौन सा बेटर है?
3: प्रेस इट. आपने दबा दिया, आपने दबा दिया. बता दो बाबा. आपने नहीं बोला ना, आप बोल दो. अपनी वाटर बॉटल कैरी करना बोल दो.
6: अपनी वाटर बॉटल कैरी करना.
3: 11 पॉइंट्स.
1: Can I change my hand, guys?
3: I want to say, आयुष्मान को बरस दबाने के लिए क्या करना चाहिए?
1: I don't know, yeah.
2: I think आपको एक बार हाथ अच्छी तरह धोने
1: चाहिए. एक बार फिर से आप.
2: Okay, next one. Let's let it try.
1: यार मैं आंसर सबके बताएं.
2: ठीक है, environment protest करने की responsibility किसकी है? हम सबकी, सिर्फ government की या environment groups की?
1: सबकी. दो बताओ.
2: See, बच्चों से भी दब गया. मेरी. That's I think a great answer. हम सबकी. He stands for, I think, the youth of our country.
3: Yes.
2: Bola meri hum sab ke liye. Well, that was a fun game. Aur, of course, Neha jeeti hai. Sirf ek game nahi tha, Neha.
1: Nahi to jeete.
2: Nahi, Ayushman aur Neha, ye sirf ek game nahi hai. Ye hume yaad dilata hai ki health aur hygiene ki basic baatein hume safe rakhti hain. And I think our kids also know that. Aur diseases se hume azaad rakhti hain. Thank you so much, bachche. Aap aaye hamare saath khelne. Aap, in fact, winners hai. Par aap bhi winners hai because I think... You know what he said, ki meri responsibility at that age to realize it's his responsibility towards a cleaner and healthier India. Thank you so much, bachche, aap hamare saath jude.
1: Thank you, boys.
2: Thank you.
1: Girls.
3: Thank you, guys. You were amazing. You. Aapne bahut acha example set kiya hai, jo sab bachche hame dekh rahe hain, jo sab maa-baap dekh rahe hain. Really well done.
2: Yeah, and I think, you know, on a platform like this, it's not just about fasters, finger first. Jaise Ayushman ka to khair buzzer, unse nahi dab raha tha, hum sabse dab raha tha. Lekin it's also about how informed our future generation is.
3: Yes.
2: The kids of our countries, inko pata hai kya unke liye sahi aur kya nahi hai. Well, thank you all so much. We'll take a really short break. But when we come back, we're going to be having this conversation even more in detail and lots of fun with our kids today. Thank you so much.

1947 में हमें आजादी मिली थी। कई लोगों ने अपना आज हमारे कल के नाम कर दिया था। अब 2047 भी दूर नहीं,

0: माफी मांगने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं? नदियों को बहते देखने की या सिर्फ किताबों में उनकी तस्वीरें देखने की, पेड़ों की छांव में बैठने की या एयर प्यूरिफायर के आसपास जीने की, सुबह चिड़ियों की आवाज से खुलने की या एम्बुलेंस के सायरनों से, खुले हाथों से लोगों से गले मिलने की आजादी, या हर लम्हे किसी वायरस से डरते रहने की, अपने बच्चों को सिर्फ जिंदा देखने की आजादी या उन्हें सेहतमंद देखने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि आजादी सिर्फ सरहदों पर नहीं बचाई जाती, वो बचती है घरों में, आदतों में, उस हाथ में जो अपने आप को साफ रखता है ताकि किसी और को प्रोटेक्ट कर सके, उस नल में जो वक्त पर बंद हो जाता है, उस पेड़ में जिसे काटने से पहले कोई एक बार सोच लेता है कि आखिर इसका असर क्या होगा, उस माँ में जो अपने बच्चों को सिर्फ ABCD ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाती है, और हर उस बच्चे में जो समझता है कि सेहत सिर्फ मेरी नहीं होती, हवा सिर्फ मेरी नहीं होती, पानी सिर्फ मेरा नहीं होता, और इसीलिए भविष्य भी कभी सिर्फ मेरा नहीं हो सकता, ताकि जब 2047 आए हमारे बच्चे सिर्फ इतना ना कहें कि हमें एक आज़ाद देश मिला था, वो ये भी कहें कि हमें साफ हवा मिली, साफ पानी मिला, सेहत विरासत में मिली, और जीने के लिए सिर्फ एक सुंदर देश नहीं एक बेहतर कल मिला था, हमें एक ऐसा देश मिला था जहां सेहत भी आजाद थी। जय हिंद।
1: थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू
1: प्रिया। I think Ayushman, she's...
3: How beautifully written and recited.
2: Thank you. Look who's talking.
1: I mean, I had the pleasure of having two really creative people, and I'm going to come to that question. But Ayushman, I want to tell you, she's specially, you know, written this for our campaign.
3: Yeah. That's amazing.
1: So I think we're really grateful for that.
2: Thank you.
1: But what were your thoughts, Priya, when you were writing this, you know?
2: You know, now that I'm a mother, and I'm sure you all can relate to it as well, I have started thinking about the planet very differently. Like, I don't want my son to live a life where he's dependent on an air purifier or always be masked up. Yeah. And I really think seriously about this when I see my friends' children being born during COVID and the lives that they have led. And I think that is what has made all the difference. So when I was writing it, good poems flow to you like water.
1: Yes.
2: And this was one of them, because ये बात जहन में हमेशा रहती है आपके कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, घर गाड़ी बंगले फिक्स डिपॉजिट के अलावा आप कैसी एनवायरनमेंट दे रहे हैं, क्या क्या विरासत में दे रहे हैं उन्हें।
1: That definitely leads, you know, leaves us to think as well कि हम अपने बच्चों को, future generations को विरासत पे exactly सही चीज क्या दे रहे हैं और क्या देनी चाहिए। But I want to ask you both, in fact, Ayushman, Priya, आप दोनों अलग अलग mediums में काम करते हैं, music, poetry, and Ayushman, of course, you're an actor as well, लेकिन दोनों के through strong messaging होती है। आज के time में क्या आप consciously choose करते हैं कि आपने किस message को amplify करना है, and how do you decide on the topic that you really want to speak about? How do you decide the cause that you want to lend your voice to? Priya, would you like to take that first?
2: I am very conscious of the idea that I do have a voice and there are people listening. And I think as public figures, we can all relate to that idea as well, because log sun rahe hai, log dekh rahe hai, aur log samajh bhi rahe hai. And you have to be very conscious of the topics you choose about. I can never write about something which I don't passionately feel about. You know, there are times when commissioned writing comes to me and I have to put my soul into it, because if I don't put my heart and soul into writing, then wo dikhne lagta hai. Audience are your biggest judge.
1: Wo
2: dil se aana chahiye.
1: And Ayushman, yeah.
3: I think biggest thing about an artist is that they can create value through their art. और जिन फिल्मों का मैं चयन करता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ कहने की बात होती है उसमें. And I believe that फिल्मों से बदलाव लाया जा सकता है, कला से, आर्ट से बदलाव लाया जा सकता है. I belong to a theatre background. और वहाँ पर नुक्कड़ नाटक हम करते थे, बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज़ किया करते थे जहाँ पर हम कुछ कहने को होता था, कॉन्वर्जेशन स्टार्टर होती थी. अब वही आई थिंक इट्स प्रॉब्ली वो ट्रिकल डाउन हो गया मेरी फिल्मों के जरिए. जिस जो फिल्मों में मैं चूज़ करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में बनाई जाएँ जो लोग देख कर कुछ महसूस कर सकें, कुछ बदलाव आए, कुछ परिवर्तन आए समाज में. और अगर वो थोड़ा सा भी होता है, so I think you are winner as an artist.
1: Absolutely. And I think the topics which you've always chosen, you know, have that strong messaging. I mean, at the end of the day, you want to tell your viewers something out there. And like I think what Priya said, jo bhi aap messaging, jo aapko dil, what, you know, what you connect with your heart, that's what comes through.
3: Yeah.
1: Why don't we, you know, see it? In fact, you know, for our viewers, you're watching the NDTV Dettol BSI Independence Day special. Ye hamara 12th season ka finale hai, which makes our campaign one

0: What are your thoughts on something like this where the kids...
1: This is the best part. I think last year we ये किया था, बच्चों को साथ में एकत्रित करके कुछ ऐसा किया था जिससे वो सीख सके
0: जी.
1: और अपने हैंड्स को हमने वहां पे किया था. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टिविटी?
0: कलर जो हमने,
2: यस वी प्लेड विद द ब्रिक्स,
1: यस
2: वी डिड द हॉपस्कॉच टुगेदर.
1: एब्सोल्युटली. तो ये एंड इससे कर रहे हैं जहां पर बच्चे कुछ सीख भी सके और खेल भी सके. एंड ऑल दीज मैसेजेस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. और आजादी का मतलब यही होता है कि सिर्फ हम अपने देश से प्यार करना तो हर कोई करता है, देश के लिए कर क्या रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है. और बच्चे अगर सीख जाए तो आगे जाकर देश के लिए बहुत कुछ हो सकता है.
0: एक्चुअली छोटी छोटी चीजें, दिस मे बी अ स्मॉल थिंग बट लाइक यू राइटली सेड, बच्चे ही हमारा फ्यूचर है.
1: एब्सोल्युटली. आज के दिन पर हम अक्सर आजादी को याद करते हैं बिकॉज इट्स 15th August. बट रियल फ्रीडम सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं होती, असली आजादी तब होती है जब हम अपने देश को डिजीज फ्री और सैनिटेशन स्ट्रॉन्ग बना पाए.
0: और जब हम एक ऐसा भारत बनाते हैं जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, जो रिजिलियंट हो, तभी हम आजादी को ट्रूली लिव करते हैं एवरी सिंगल डे.
1: बनेगा स्वस्थ इंडिया, बनेगा स्वच्छ भारत, और तभी बनेगा एक सच में स्वतंत्र भारत.

एनडीटीवी और एनडीटीवी के तमाम दर्शकों को एनडीटीवी के रीलॉन्च होने पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, विश्वास रखता हूं कि जिस तरीके से एनडीटीवी ने निरंतरता में स्पष्ट सही जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम किया, आगे भी उसी

0: guys. So for Independence Day, let's go around asking people what their favorite Independence Day memories are and what they think of living in Bharat. What is your most cherished or most favorite Independence Day memory?
1: जब हम छोटे थे, मैं ऐसे ही बताऊं, पहले बड़ा क्रेज होता था पतंग उड़ाने का.
2: When I was in school, we used to get laddus and we used to hoist flag.
3: Independence Day पे जो हम ये kites वगैरह जो हम ये उड़ाते हैं, तो अभी इस सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं. बट हमें ये बचपन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, तो यही सारी मेमोरीज हम मिस करते.
0: देश से बाहर जाते हैं आप, ट्रैवल करते हैं, तो आपको इंडिया की याद सबसे क्या आती है?
2: इंडियंस एंड इंडियन फूड.
1: इस देश की मिट्टी में ऐसा जुनून है कि लोग बाहर जाके भी अपने देश को याद रखते हैं और अपने देश के लिए उनकी आंखों में आंसू आते हैं वापस आने के लिए.
0: माय गॉड, क्राइंग हियरिंग यू. या पर अभी आज कोई बच्चे सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहते हैं अपने देश के बारे में सोचने के लिए?
4: इंडिया के बारे में सीखे हैं, कल्चर के बारे में सीखे कि हमारे में कितने नॉर्थ ईस्ट के कितने स्टेट्स हैं.
1: मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने देश के इतने महत्वपूर्ण डे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है ये, उसको अपने बच्चों के साथ इतिहास में उनको बताया जाए कि पहले आज से 80 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ हमारे देश की क्या हालत थी और हमने इन 80 सालों में क्या किया है.
2: इंडिया इज़ अ होम, इट्स अ सोल.
0: हाउ कैन वी नॉट एंड द डे विद छोले भटूरे, मोमोज, खीर एंड लस्सी व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे? सो इफ यू आर हियर टुडे, मेक श्योर यू आउट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, मेक अ होल डे आउट ऑफ इट एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे.
5: जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया.
6: Well, that's all from me. For all the latest updates from India and around the world, keep watching NDTV. And remember, don't be afraid to be in the limelight. With camera person Ritvik Gugnani, this is Mayank Chaudhary. See you next weekend.

0: नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर झेलम की कलकलाहट मुझे सुनाई दे रही है। मेरे ठीक सामने पीओके के पहाड़ हैं और जिस ज़मीन पर मैं खड़ी हूँ, ये गेटवे ऑफ कश्मीर भारत के नक्शे पर उरी, जो साहस, बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। पाकिस्तान के साथ जो चार युद्ध हुए हैं, उन चार युद्धों में इस ज़मीन का अपना एक अलग महत्व है और इसीलिए हमें लगा, क्योंकि यहाँ पर जवानों की अग्नि परीक्षा भी होती है, विजय का जश्न भी होता है, तो आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए इससे बेहतर जगह और इससे बेहतर साथ क्या हो सकता है। तो आज जवानों के बीच हमारे साथ पटौदी के नवाब हैं, दिलों के सरताज हैं और सिनेमा की दुनिया के सुपरस्टार हैं, सैफ अली खान। मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका।
1: नमस्कार मीनाक्षी जी।
0: नमस्ते,
1: थैंक यू,
0: वेलकम।
1: नो नवाब प्लीज, सिंपली एन एक्टर।
0: चलिए, लेकिन आज रील की दुनिया से आगे निकल कर रियल लाइफ में आप पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं, जहाँ से हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं।
1: नो, मैंने फिल्में की हैं पास में, हमने एलओसी कारगिल की फिल्म भी की थी और बॉर्डर के काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन इतना करीब कभी पहले नहीं है।
0: आज का दिन सैफ अली खान से आगे निकल कर जवान बनकर दिखाएंगे।
1: करेक्ट,
0: तैयार है आप? जय जवान। आइए बढ़ते आगे। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर आपको लेकर आए हैं
1: जी,
0: और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सामने हमें जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो इस जगह की सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन करता है और यहाँ पर चैलेंजेस क्या है वो बताता है। हमारे सामने पाकिस्तान की पोस्ट है
2: जी। ज़रूर, अभी आप एक व्यू पॉइंट पर खड़े हैं और जिस लोकेशन पर आप अभी खड़े हैं, हम तीनों साइड में पीओके से घिरे हुए हैं और यहाँ पर अगर आप सामने देखेंगे तो आपको हर चट्टान पर एनिमी की पोस्ट दिखेगी, बेस पर पोस्ट दिखेगी।
0: They can also see us.
2: Correct.
0: Right now.
2: Presently, yes. In real time.
0: अच्छा, क्योंकि उरी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है पाकिस्तान का, तो जो भी हमारे वॉर्स हुए उस हर वक्त में ये बहुत सेंसिटिव रहा, और अभी जो ऑप्शन रूल के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: तो अगर हम इसको हिस्टोरिकली जोड़ें तो ये पूरा एक झेलम वैली, जो अगर अभी हमें नीचे दिख रहा है, ये झेलम वैली का अगर आप इंस्टेंस लें तो पुराने टाइम से ही जब हम बोलते थे झेलम वैली कार्ट रोड या फिर सिल्क रूट, यही वो रूट है जो श्रीनगर को कनेक्ट करता था मुजफ्फराबाद, फिर इस्लामाबाद और फर्दर टू सेंट्रल एशिया। सो सारा ट्रेड इसी रूट से होता था। इसकी खास बात यह है कि ये विंटर्स के टाइम भी कट ऑफ कभी नहीं हुआ था, तो पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस ये रूट हमेशा ओपन रहा था। ये लास्ट में एक लाइन ऑफ डिफेंस बन गया था जिसको अभी हम LC के नाम से या LOC के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पिछले साल यहाँ पे काफ़ी शेलिंग हुआ था, बट अगर मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल दूँ डिफरेंस बिटवीन हमारी आर्मी और उनकी आर्मी, तो हमारी आर्मी ने कभी भी किसी सिविलियन एरिया पर एक भी बम नहीं गिराया, हालांकि हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे, बट उन्होंने यह नहीं किया। हमारे काफ़ी गाँव में बहुत भारी मात्रा पर नुकसान हुआ था।
1: तो पीओके इस बार्ब्ड वायर की उस तरफ से शुरू होता है
2: जी, तो नाला एक सिधाई बना रहा है,
1: नीचे इस तरफ भी पीओके,
2: नाले की इस तरफ हम हैं और दूसरी तरफ पीओके स्टार्ट। आपको जो गांव सामने सारे दिख रहे हैं और जो रिज लाइंस दिख रही हैं वो सब पीओके हैं।
1: You explain so nicely and you're so clever, yaar. Brilliant.
2: Right. So nice.

0: आपने बंकर देख लिया, बंकर के अंदर जिंदगी क्या है और कैसे दुश्मन पर नजर रखनी है, लेकिन ये देखिए आपने हमें लाइव पेट्रोलिंग की। जो रूटीन प्रोसेस और रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है मेरे ख्याल
1: से, ये नदी से है,
2: ये पूरा फेंस है, तो बेसिकली दो पोस्ट के बीच में अगर हमें फेंस को डोमिनेट करना है तो हम उसको पेट्रोलिंग से करते हैं। और एक सवाल आपने मेरे से ऊपर भी पूछा था कि ख़राब मौसम के टाइम पे हम कैसे फेंस की निगरानी करेंगे या देखेंगे या सर्विलेंस डिवाइस से, तो पेट्रोल आपके सामने लाइव जो चल रही है ये फेंस की निगरानी करती है, कोई भी दुश्मन दिखने पर ये फायर करेगी या फिर चेक करेगी कि फेंस इंटैक्ट है या कोई घुसपैठ हुई तो नहीं। हम लोग अपने घर में तो रेस्ट ले सकते हैं बट पेट्रोल्स कभी भी ख़राब मौसम के टाइम कभी रुकती नहीं है। तो आपने भी LOC शूट की थी उस टाइम पर, क्या आपने भी ऐसे ही पेट्रोलिंग करने की कोशिश की थी?
1: थोड़ी पेट्रोलिंग की और हमें थोड़ा एक्शन करना पड़ा, भाग दौड़ करनी पड़ी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन का स्ट्रेस था ना, बिकॉज इट्स क्वाइट हाई अप।
0: कैप्टन अनुज नैयर का किरदार आपने,
1: दैट्स राइट मैम, वेल रिमेम्बर्ड।
2: तो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी आर्मी में जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नाम, नमक और निशान। आपने इसको बहुत जगह लिखा हुआ भी देखा होगा। अगर इसका आप लिटरल मीनिंग लेंगे तो नाम हमारे पलटन का नाम, नमक हमारे देश का नमक, और निशान हमारा झंडा जो आपने ऊपर देखा या तिरंगा। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें मोटिवेट करती हैं इन सोल्जर्स को अभी भी चलने के लिए इस हार्ड टेरेन में, और इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी ये पेट्रोलिंग करते रहते हैं।
1: शाबाश, जय हिंद,
0: जय जवान,
1: जय हिंद, जय जवान।
0: फॉरवर्ड पोस्ट में अभी तक जितना समय हमें मिला, मेरी नजर कुक हाउस पर आकर टिक गई है। पेट पूजा का वक्त है। Are you hungry?
1: Oh, I could eat.
3: अब तैयार है आपके लिए, हमने बहुत अच्छा
0: क्या वक्त
1: है? After you.
0: वाह क्या बात है, एकदम बिल्कुल एक छोटे से सेटअप में सारे जरूरत के सामान मौजूद है यहाँ पर।
1: एक्चुअली खाना बनाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी आग की जरूरत होती है,
0: पर हम तो सुपर शेफ से बात कर रहे हैं। हाँ।
1: आपको कैसे मालूम? सुपर शेफ तो नहीं, लेकिन हम भी किचन में काफी टाइम स्पेंड करते हैं हम घर पे।
3: आप अपने हैंड्स यहाँ ट्राई करना चाहिए?
1: आई डोंट माइंड, अगर आप मुझे कुछ सिखा दें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी।
0: पूरी बनाई आपने जिंदगी
1: में? नहीं, एक्चुअली नहीं बनाई।
0: चलिए आज फिर आप ही का टास्क है।
1: कैसे करना है भाई?
0: थोड़ा सा रखना पड़ेगा।
1: This is very nice, Meenakshi. Let me see once. I'm taking the. Yeah, take this. It's very good. You're doing well. I like that. This is mine. No, my God. You fix this one also.
0: Yes.
1: Meenakshi, well done. Wow. Let's have a puri today.
0: इस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि जितना इम्पोर्टेंट पूरी का बेलना, उसका तले जाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है गरम गरम पूरी को खिलाया जाना। ठंडी पूरी में बात नहीं, मजा नहीं आता।
1: थैंक यू,
0: दैट्स नाइस।
4: दिल पे जो खराशे
0: हैं
4: तुझको ये तराशे हैं।
0: खाना बनाना एक आर्ट है, खाना खिलाना भी एक आर्ट है।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
0: अच्छा आप बस ये बताइए, पहचान कर किसने बनाया है? एक मैंने बनाई है, एक सर ने बनाई है, बताइए क्या लग रहा है आपको, किसने कौन सी बनाई?
5: ये वाली सर ने बनाई है।
1: ये वो क्या बोलते हैं इसको, ये वो गलत प्रोफाइलिंग वाली बात हो गई। आपको लगा मैडम अच्छी पूरी, बट आप करेक्ट हो।
0: आप खाना भी खाइए प्लीज।
1: हम भी खा रहे
0: हैं, आपके लिए भोजन का पूरा अरेंजमेंट है।
1: दाल एंड राइस। तो आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। तो हम भी हैं थोड़े बहुत।
0: हम भी हैं थोड़े बहुत।
5: मैम एक्चुअल में हम तो इधर बॉर्डर एरिया पे रहते हैं, आपके फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आयोगे, तो आपको इधर कैसा लग रहा है? इधर आने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है, कैसा माहौल है, क्या क्या लग रहा है आपको इधर?
0: मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो घर में हम लोग आर्मी की बातें, दफ्तर में आर्मी से रिलेटेड कई बार शूट्स होते हैं, खबरें आती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर उसको इतने नज़दीक से जब देख रहे हैं ना, तो सरियल जिसको बोलते हैं, कि यकीन नहीं हो रहा एक बात की है कि ऐसी कंडीशंस में आपको दिन रात जज्बे के साथ जुड़े रहना है।
1: पर हमारे बच्चे भी हैं, वो पूछते हैं कि दुनिया में इतनी सारी वॉर्स चल रही हैं इस टाइम पे, यू नो, और ख़तरा भी उन्हें लगता है. वो पूछते हैं कि हमें कौन देख रहा है और क्या होगा और सिचुएशन बढ़ेगा तो नहीं. तो जब हम बोलते हैं कि नहीं, हमें आर्मी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो भी आपको सलाम भेजते हैं और हम वी आर ऑल वेरी प्राउड.
0: चलिए, खाना हो गया जी, खाना हो गया. अब अपने सफर को हम आगे बढ़ाते हैं.
1: अब आके हजम
0: करते हैं. प्यारी बातें आप सबके साथ में हुई. यू एंजॉयड द कन्वर्सेशन.
1: सो नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर.
0: चलिए, लेकिन अभी आज के दिन में हमारे कुछ और प्लान्स हैं आपकी बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी, तो अब उस वक्त को आगे बढ़ाते हैं.
1: यस.

सैफ, अब आपको हम लेकर चल रहे हैं अमुन सेतु की तरफ, लेकिन इस लोकेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ से मुजफ्फराबाद 50 किलोमीटर और इस्लामाबाद 200 किलोमीटर, लेकिन इस जगह तक आम टूरिस्ट भी आ सकते हैं।

0: हैं लोग बस ये दिस इज द लास्ट पॉइंट
1: जो जब हम कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो लास्ट पॉइंट एक अमान अमन सेतु गेट होता है इसके बाद जो ब्रिज है जो आप सामने देख रहे हैं ये 2005 में एक रिकॉर्ड टाइम 6 घंटे में बिल्ड किया गया था ये पूरा ब्रिज इंडियन आर्मी की इंजीनियर रेजिमेंट ने बिल्ड किया हुआ है
2: 6 घंटे में
1: हां जी
0: 6 घंटे में
1: जी एंड इसका 2/3 हिस्सा हमारे पास है एंड 1/3 हिस्सा एनिमी के पास है जो कि पीओके है अभी आप सामने अपने देख सकते हैं ये एनिमी के कुछ लोग साथ ही साथ उनके फ्लैग्स अगर आप क्लियरली वहां सामने व्यू पॉइंट के पास देखेंगे तो आपको दो डिस्टिंक झंडे दिखेंगे पहला झंडा आपको पाकिस्तान का झंडा अगर मालूम है वो बाईं तरफ है और दाहिनी तरफ सफ़ेद धारी और पीले रंग का जो आपको झंडा दिख रहा है वो आज़ाद कश्मीर या पीओके जो हम बोलते हैं उसका झंडा है
0: करीब कभी इससे पहले आना हुआ
2: पहली बार बस वहाँ के वो साइंस भी पढ़ने को मिल रहे हैं अगर आप वहाँ पे देखे थे रिटन कोट्स बाय इकबाल अबाउट जॉइनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट जॉइनिंग अंडर वन आई थिंक इट्स अ कॉल फॉर ऑल इस्लामिक्स
0: परवेज साहब आप हमें एक्सप्लेन करेंगे
3: मैं एक क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा जो कमांड पोस्ट पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है आप नोटिस करेंगे कि आप देखेंगे पीओके वाले साइड में इन्होंने बहुत सारे फ्लेक्सेस लगाए हुए हैं तो स्लाइटली जो आप देखेंगे ग्रीन रूफ बिल्डिंग के स्लाइटली लेफ्ट साइड एक फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है एक हमारे सामने एक ब्रिज के जस्ट अपोजिट लगा हुआ है तो इन सारे फ्लेक्सेस पे इन्होंने इकबाल की पोइट्री लिखी है इलामा इकबाल जो पॉइंट है तो स्लाइटली लेफ्ट साइड जो व्यू पॉइंट का जो फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है अगर मैं वो आपके लिए पढ़ूँ उसमें इन्होंने उर्दू में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान नूर है नूर को जवाल नहीं विच मीन्स कि पाकिस्तान इज दैट लाइट विच नेवर एंड्स एंड जो दूसरी दो लाइन्स लिखी हुई हैं एक हो मुसलमान हरम की पासवानी के लिए नील के साहिल से लेके तबे काश्कार तक विच मीन्स ऑल द मुस्लिम फ्रॉम रिवर नाइल इन इजिप्ट टू काश्कार प्रोविंस इन चाइना मस्ट कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट द होली काबा मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द यूनिटी ऑफ द मुस्लिम्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द होली काबा वेयर मुस्लिम परफॉर्म हज एंड जो हमारे सामने जो आप देखेंगे फ्लेक्स बोर्ड ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है ब्रिज के बिल्कुल अपोजिट इस बोर्ड पर इन्होंने उर्दू और अरबिक का मिक्सचर लिखा हुआ तीन लाइंस लिखी हुई हैं तो फर्स्ट लाइन जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह सेकंड लाइन इज़ पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह एंड लास्ट लाइन इज़ कश्मीर पाकिस्तान की शरग विच मीन्स पाकिस्तान
0: कश्मीर पाकिस्तान की
3: शरग है शरग यस जगलर मैन जगलर मैन और जो पहली लाइन इन्होंने लिखी हुई है उसका ये मतलब है कि पाकिस्तान केम इन टू बींग एज अ रिलीजियस कंट्री जब वो बना वो मजहब के आधार पर बना एंड सेकेंड लाइन इज उसकी रिलेशन किसी भी कंट्री से या कश्मीर से वो जस्ट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन है एंड लास्ट लाइन इज कश्मीर इज द जगलर मैन ऑफ पाकिस्तान तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने यहाँ पे की है इस बोर्ड का हमने रिप्लाई दिया अपने राइट साइड ये फ्लेक्स बोर्ड लगा के विच इज़ मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना दैट रिलीजन डोंट टीच अस टू हेट ईच अदर एंड इट ऑल्सो शोज द सेक्युलर नेचर ऑफ अवर कंट्री एंड हमने उर्दू में लिख रखा है ताकि वो पढ़ सकें एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इन फ्लेक्सेस के बारे में कि ये वाली फ्लेक्सेस और ये वाली फ्लेक्स पेन डाउन बाई सेम पॉइंट इलामा इकबाल तो रिप्लाई भी हमने उसी पॉइंट का दिया तो ये कमान के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग
0: इसमें मुझे लगता है एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है कि आपके पास नज़र तो है लेकिन क्या नज़रिया है देखने का या नहीं है और जिन लेखक और जिन शायर के जरिए उन्होंने धर्म के आधार पर एक मैसेजिंग की है उन्हीं शायर की लेखनी से हमने पूरा भारत कैसे एकजुट होता है उसका मैसेज यहाँ पर दिया है प्राउड टू बी एन इंडियन सैफ जब आप इस वक्त इन वादियों को देख रहे हैं
2: जी
0: तो आप सोचिए कि इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच इंडियन आर्मी सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस को भी अंजाम देती है
2: एक्चुअली मैं यही सोच रहा था कि हमारे देश का एक सबसे खूबसूरत शायद सबसे खूबसूरत वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज थोड़ा सेंसिटिव है और इट्स नॉट ओपन टू फुल टूरिज्म एंड ऑल ऑफ अस इट्स लिटिल लिटिल सैड इन अ वे यू नो काश ऐसी खूबसूरत जगह में हम यू नो पूरा देश कंफर्टेबली आ सकता
0: कश्मीर तो एक वक्त में फिल्मों की शूटिंग
2: मेरी माँ ने इतने गाने किए शॉट सो मेनी फिल्म्स माय पेरेंट्स आल्सो
0: उनकी डेब्यू फिल्म कश्मीर की करी शॉट इन कश्मीर मैं आपको अब मेरे ख्याल से देश की सबसे पर्पस ड्रिवन व्हीकल जो है और एट द सेम टाइम जहाँ पर सिक्योरिटी और भरोसा ये दोनों साथ साथ चलते हैं उस व्हीकल की तरफ लेकर जा रही हूँ इंडियन आर्मी का कैस्पर व्हीकल आर यू रेडी फॉर इट
2: एब्सोल्युटली
0: चलिए आपको पूरा रियल टाइम एक्सपीरियंस देने की हमने तैयारी की है इंडियन आर्मी के साथ में तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो पहनाए जाएंगे पूरा अनुशासन बनाना ऑल सेट
2: यस

0: चलिए कैस्पर व्हीकल में हम आ गए हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ
1: वेरी कम्फर्टेबल ऑल्सो इट सीम्स। अभी मैं टैंक में बैठा हूँ और वो काफ़ी मतलब टाइट था ऑब्वियसली। यहाँ की फीलिंग तो ये आपको मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए है कोई अगर एक सिचुएशन में कुछ एक्शन हो रहा हो या
2: जैसे हमारे पास कहीं जैसे कहीं भी कोई फायर आ रहा है हमारे
1: yes.
2: तो इस पर ट्रांसपोर्ट करते हैं हम। हमारे ऊपर फायर डालेगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सेफली वहाँ तक जाएंगे और उसके ऊपर डायरेक्ट फायर डालेंगे, एम फायर डालकर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे सर।
0: आई थिंक एक एक्सपीरियंस हम जरूर उसके ऊपर जाकर भी देखना चाहेंगे अगर आप परमिशन दें हमें तो।
2: बाहर का व्यू देखिए
0: ग्राउंड जीरो का रियल एक्सपीरियंस है ये। ये कोई शूटिंग नहीं है, ये कोई सेलुलॉइड नहीं है, इट्स रियल एक्सपीरियंस। तो ये सबसे जो डिफिकल्ट टेरेन्स है ये उनमें से एक। सो नॉर्थ कश्मीर में इस वक्त हम है, नॉर्थ कश्मीर इज लाइक द गेटवे ऑफ कश्मीर।
1: All three sides we are surrounded by Pakistan occupied Kashmir,
0: yes,
1: right?
0: Yes.
1: Okay, and this one corridor is open into Srinagar. Amazing.
2: सर यहाँ पर हमारा कैस्पर का जो रास्ता है वो शॉर्ट है, यहाँ से हमारी जिप्सी मूव करेंगी और हमारी जो पेट्रोलिंग है वो मूव करेगी, तो यहाँ पर हम अपना कैस्पर रोक देंगे, यहाँ से अभी हम डाउन होते हैं सर।
0: सर चलिए व्हीकल से उतरने के बाद व्यू तो बहुत ज़बरदस्त है लेकिन मुझे लगता है सर चैलेंजेस भी उतने ही हैं, तो हमें बताइए अब अगला स्टेप क्या है यहाँ से।
2: अब यहाँ से हमारा ड्रोन मैन कैमरा वाला यहाँ से पूरा अपना उड़ाएगा ड्रोन और पूरा एरिया सर्च करेगा।
0: आइए बढ़ते हैं आगे।

0: मुझे जिंदगी के इतने विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर कि इतनी खूबसूरत जगह है और हम एक ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन के ग्राउंड जीरो एक्सपीरियंसेस को ले रहे हैं कि आर्मी के ऑपरेशन इस जगह पर कैसे होते हैं, टेररिस्ट को कैसे आपको न्यूट्रलाइज करना है. अभी रिसेंटली क्योंकि सरकार बहुत काम कर रही है इस चीज़ पर कि बॉर्डर टूरिज्म जो है उसको बढ़ाया जाए. बॉर्डर टूरिज्म का पर्पस भी कहीं ना कहीं ये है कि आपको पता हो कि आपके जवान इस तरह की सिचुएशन में कैसे काम करते हैं.
1: इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं ना, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द थिंग.
0: जितने गांव हमें आसपास दिखाई दे रहे हैं,
2: जा रहा
1: हूँ.
0: चलिए अब व्हीकल हमारा रुक गया यहाँ से, अब हम ऑन फुट जर्नी आगे बढ़ाएंगे.
1: ओके.
0: अब आपके ट्रैकिंग का टेस्ट होगा यहाँ पर. चलिए अब ऑन फुट हम जब पेट्रोलिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कितना डिफिकल्ट रहता है आप लोगों के लिए पैदल चलते हुए जाना और पूरे एरिया को चेक करना?
3: हम डिफ़िकल्टी टास्क के ऊपर डिपेंड करती है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है. ये जो इलाका है इसको हम बहुत ही रेगुलरली हम डोमिनेट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता अब हमें हमारे जवानों को इतनी डिफ़िकल्टी आती है, बिकॉज हम उसके लिए हमेशा ट्रेन करते हैं.
0: ट्रेन किया जाता है. अच्छा, आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पर रेजिडेंशियल भी है, साथ में घर बने हुए हैं, जो मैं देख पा रही हूँ कि पूरा गाँव का एक इलाका है और रिमोट एरिया एकदम.
3: ये जो विलेज है ये एलसी के बहुत पास है. जो भी हमारे पेट्रोल्स जाती हैं उसमें हमें विलेजेस भी मिलते हैं, जंगल के पैचेस भी मिलते हैं, नाले भी मिलते हैं. तो अलग अलग एरिया को हम अलग अलग ड्रिल से सैनिटाइज करते हैं.
1: जैसे हम अभी ऑलमोस्ट रोड पे चल रहे हैं तो कंट्रोल में है, लेकिन अगर वहाँ पे चेक करना हो,
3: साथ में हमारे साथ हमारा ड्रोन ऑपरेटर है, ही इज लाइक ए हॉक आई.
0: ये अभी पूरा जो गांव है, मतलब यहाँ पर ये खेती भी हो रही है, लोगों के घर भी है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये है कि क्योंकि बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, हम बहुत रिमोट एरिया में हैं इस वक्त.
1: कितने नज़दीक हैं हम बॉर्डर से?
0: आप
1: 1 किलोमीटर. व्हाट द हेल मैन.
0: अच्छा, जो सर इनफैक्ट बेहतर बता सकते हैं बात को, कि जो लोग बॉर्डर के इस एरिया में बसे हैं दे आर इनफैक्ट द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स टू एनीथिंग दैट हैपेंस ओवर देयर. ऑफकोर्स, क्योंकि एक तरफ जैसे कारगिल वॉर के समय भी जो पोर्टर्स थे वहाँ पर, या जिन्होंने सामान ऊपर पहुँचाया, जिन्होंने मदद की, और सबसे पहले जिन्होंने आतंकवादियों को वहाँ पर स्पॉट किया था, जिन्होंने बाद में इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया.
3: यहाँ के जो लोकल्स हैं, गुजर्स भी हैं, खेती भी करते हैं, वो इस इलाके में घूमते रहते हैं, उनके रिश्ते फौज के साथ बहुत अच्छे हैं. कुछ भी उनको अटपटा लगता है, सस्पिशियस लगता है, वो तुरंत हमें बताते हैं.
0: दे आर लाइक द आर्मी बिहाइंड द आर्मी.
3: बिल्कुल, वो हमारे एक्सटेंशन ऑफ हैंड हो गए बेसिकली.
0: Fire?
3: Oh, fire. Actual operations, we just hear such kind of sound whenever someone fire. Then we have to locate from where that sound is coming to locate the firer.
4: We are providing. Now, what whenever happens, this kind of situation happens.
1: Take cover.
4: Take cover.
1: All right.
0: आप लोग कवर कैसे देते हैं यहाँ पर?
4: जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हम इतनी ट्रेनिंग कर चुके होते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन को नेगोशिएट कर सकें. साउंड को लोकेट करते हैं हम किस दिशा से आ रही है, और अपनी ट्रेनिंग सीख हुई ड्रिल से हम उस एरिया को क्लियर करते हैं और दुश्मन को न्यूट्रलाइज करते हैं, और फिर अपना टास्क को करने के लिए आगे बढ़ते
1: हैं. अमेजिंग.
4: अभी हम आगे बढ़ते हैं.
0: ये अभी जो हमने ड्रिल देखा यहाँ पर, ये रील से कितना अलग था?
1: सी, दैट्स वन थिंग मैं हमेशा बोलता हूँ, फिल्मों में भी रियल गन फायर की जो आवाज़ होती है ना, इतना लाउड, इतना पावरफुल होता है.
0: तो ये हमारी पेट्रोलिंग का आखिरी पॉइंट है सर?
3: ये आखिरी पॉइंट नहीं है,
1: ठीक है.
3: हाँ, एक्चुअली जैसे आप देख सकते हैं आगे टेरेन बहुत मुश्किल है. हमारा पेट्रोल नॉर्मली नाले तक जाता है, आप वो आयरन ब्रिज देख सकते हैं, उसको क्रॉस करके आगे भी जो हमारा डेजिग्नेटेड पोजिशन है वहाँ तक हम पेट्रोल करने जाते हैं. ये नाला वेस्ट की तरफ से अभी लगभग 1 किलोमीटर दूर से एलसी है, ये पीओके से नाला आ रहा है,
0: इस्लामाबाद नाला.
1: वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ इंडिया, नो? दिस लुक एट अ नाइस पिकनिक स्पॉट.
0: लेकिन इंसानों के बीच के जो कन्फ्यूजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेंशन्स हैं, बॉर्डर्स के जो टेंशन्स हैं, वो सब क्या ज़मीन पर सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं, ये उसका एक लाइव उदाहरण है.
1: हमको
0: उसमें एक सुंदरता, प्राकृतिक खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन जो यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, बॉर्डर की सिचुएशन है, उसमें इस मोड में तो आप कभी यहाँ नहीं आ सकते हैं. और सेना का यहाँ पर होना और एक पूरा एरिया को प्रोटेक्शन देना
1: बहुत ज़रूरी है, वरना श्रीनगर पहुंच जाएंगे भाई, अगर आपकी आप नहीं थे तो
3: नहीं पहुंचने देंगे।
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं,
0: ये इंडियन आर्मी। आपने यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट एरिया में पेट्रोलिंग का एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन जिन जवानों के साथ हमने पेट्रोलिंग की वो जवान कैसे तैयार होते हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है, वो कैसे, कितनी हार्डशिप्स हैं मौसम से लेकर फिजिकल फिटनेस से लेकर, इंटरेस्टेड हैं आप ये देखने के लिए?
1: बहुत इंटरेस्टेड हूं, इनफैक्ट
0: ये वो वाली फिटनेस नहीं है जो हम जिम में पसीना बहाते
1: हैं,
0: ये अलग तरह की फिटनेस है। तो आपको मैं इस वक्त सीधे वहीं लेकर जा रही हूँ, और हमारे साथ सर इस वक्त आ चुके हैं जो हमें इस डेमो को एक्सप्लेन भी करेंगे। वंडरफुल मीटिंग यू सर,
5: थैंक यू सर। अभी के हिसाब से सब हमने ये पिक्चर पेंट किया है कि जनरल एरिया रेंज,
0: हाँ।
5: रेंज पे एनिमी के 5-6 मिलिटेंट जो कि आके डिफेंस ले चुके हैं। हमारे इंट के मुताबिक हम अभी अपनी जो ग्राउंड सेना है उसको इनिशियल हाँ। हाइड में रखा हुआ है। उससे पहले हमने दो अपने आर्म्ड व्हीकल जो कि ऑटोमेटिक वेपन से लैस है, पहले हम फर्स्ट अटैक फर्स्ट वेव में उनके ऊपर आर्म्ड व्हीकल के साथ करेंगे, वो दुश्मन उसी टाइम पिन डाउन हो जाएगा।
1: राइट,
5: पिन डाउन होने के बाद फिर हम अपनी पैदल सेना को इनिशियल हाइट से निकाल के फॉरवर्ड हाइट 1 फॉरवर्ड हाइट 2 उसके बाद फाइनल असॉल्ट, उसका एक डेमो अभी आपको दिखाएंगे हम। तो शुरू करें
0: जी,
1: शुरू करो सर।

0: क्या कुछ फाइन हम ट्राई कर सकते हैं?
1: हाँ जी
0: शेफ सर, आप ट्रेन्ड हैं बचपन से।
2: बचपन से
0: चलिए देखते हैं।
3: रेडी अपर टर्न से टर्न राउंड।

0: fire ho jata na upar.
1: Kaisa raha experience aapka?
2: That was tiring.
1: Tiring.
2: That was tiring. Somehow tiring, but exciting.
1: अभी पता चलता है कि आपने टारगेट्स कितने हिट किए हैं, जरूरी तो रिजल्ट जानना है।
2: यहाँ से लग रहा था कि एक आध लगे।
3: नहीं, टारगेट एरिया में तो है, टारगेट तो पकड़ रखा।
1: 10 और कितने नंबर?
3: अभी हिटिंग पे पता चलेगा।
1: अच्छा, वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा कि कितना करीब था टारगेट।
3: गोलियां तो लगी हैं आपकी, चाहे डिस्पर्स हो गए, लगी हैं। तो जो इस सर्कल में उसका एक पॉइंट है।
1: क्वाइट गुड, आई मस्ट से टू माय व्यूअर्स आल्सो, क्वाइट गुड। जवानों की ट्रेनिंग आपने देख ली, लेकिन
2: आप कुछ स्ट्रॉन्ग जवान,
1: स्पोर्ट एक्टिविटी भी देखी जाए और क्रिकेट तो आपके खून में है
2: जी। अभी ये मुझे अपने आप को एम्बैरेस करने का फुल चांस है।
1: चलिए, क्रिकेट का फील्ड तैयार है। सैफ सर, ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे आर्मी की फील्डिंग सेट है और सिनेमा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैं तो कह रही हूँ पटौदी खानदान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
2: भाई धीरे से डालो।
1: कैसा आपका क्रिकेट का एक्सपीरियंस?
2: मुझे लगता है कि दुनिया में से बहुत जो खूबसूरत ग्राउंड्स हैं, ये एक होगा।
1: एंड आर्मी की जो तैयारी है, जो टीम्स हैं, उन सबके अंदर जो एक जज्बा है,
2: इट्स सो नाइस। अगेन, क्रिकेट इज अनदर बॉन्डिंग स्पोर्ट। व्हेन यू प्ले नाउ विद पीपल, इट मेक्स यू रिस्पेक्ट देम ऑन अ डिफरेंट
1: लेवल। तो आज का पूरा दिन कैसा रहा आपका?
2: मुझे बहुत अच्छा, बहुत मजा आया।
1: तो हमारी दिन की एक्टिविटीज का पार्ट यहाँ खत्म होता है, लेकिन जब आपने कहा कि आपको इतना अपनापन महसूस हुआ और यहाँ पर जितनी एक्टिविटीज आपने की, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है आपकी कल्चरल आइडेंटिटी, जिसको हम देखेंगे आज की रात में, और उसको जब आप अटेंड करेंगे तो आप अपने साथ बहुत सारी यादें आज लेकर जाने वाले हैं, ये मैं आपको अभी गारंटी कर सकती हूँ। अपने सारे गाने और डांसेस याद है ना?
2: Oh, no. अभी मुझे डर लग रहा है।
1: ऐसा ना हो कि रियल टास्क कब आए आपके सामने।
2: I think that's the scary part. ये सब ठीक था।
1: लेकिन आप मिलेंगे स्टेज पर।

0: मैंने कुछ घंटे के लिए आपकी ज़िंदगी आज जी है और मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही मुश्किल है और हर मुश्किल में आपका जज्बा कायम रहता है और इस बात का मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं अपनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअली मेरी परिवार और पूरे देश की तरफ से आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। आपकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, सेफ रहते हैं।
1: मैं मंच पर कुछ जवानों को आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्होंने स्पेशली आपके लिए आज इस कार्यक्रम के लिए तैयारी की है, अपने उन इमोशन को अपने शब्दों में ढालने की कोशिश की है। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी लांस नायक अंकित जी को। प्लीज आइए अपनी टीम के साथ। बहुत स्वागत है आपका मंच पर।

0: गाइस, कांग्रेचुलेशन।
1: एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम पूरी टीम को थैंक यू भी कहेंगे।
0: सो मच।
1: तो अब स्टेज पर मैं इनवाइट करना चाहूंगी सिपॉय साहिल नैन जी को, और उन्होंने आज एक परफॉर्मेंस तैयार किया है।
2: ओके,
1: हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर दैट?
2: आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी।
1: और ऐसा लग रहा है कि आप ही की फिल्म का कोई गाना है।

0: बहुत खूब भाई।
1: तालियां तो नहीं सुनाई दी हैं क्योंकि जिस लेवल का परफॉर्मेंस हुआ है तो यूजुअली होता है क्या, हम लोग कहते हैं नहला था या दहला था, तो नहले पर दहला था। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल मुझे और पूछना है, सैफ अली खान के सामने उन्हीं के डांस को आपको उन्हीं के अंदाज में करना है, ये तो बट कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है, इसे तो मानना पड़ेगा।
2: यस मैम।
0: अरे यस मैम, नहीं बहुत अच्छा किया उन्होंने।
1: आपने जब आप जब इन्हें परफॉर्म करते हुए देखे थे, आपको क्या अपना पूरा शूट याद तो नहीं आ रहा था उस समय?
0: मुझे वो शूट याद आया।
1: Anything interesting that you want to share?
0: The shoot was interesting. वो गाना इतना अच्छा था, लेकिन कोरियोग्राफर ने कहा कि कुछ मूव्स बताए, लेकिन ज्यादातर उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से करो। तो वो ऐसी बना। और अगर आपने मतलब ऑन द स्पॉट मेकअप किया,
1: आप ही हैं।
0: आपने देखा वो शुरू होता है वो विस्की ग्लास के साथ, वो इतना फेमस हो गया एनिमल में जो बॉबी डियोल ने सीन किया था, लेकिन एक्चुअली वो इस गाने में था सबसे पहले। So that was the
1: trendsetter,
0: beginning.
1: Huh?
0: Trendsetter.
1: Thank you so much, sir. Thank you. And all the very best.
0: All the best.
1: डांसिंग होगी, सिंगिंग होगी, अब थोड़े से क्यू एंड ए करते हैं, कुछ सवाल जवाब। आप सब लोग तैयार हैं कुछ सवाल जवाबों के लिए? और क्वेश्चन आंसर में आपकी रियल लाइफ से लेकर, आपके रियल लाइफ से लेकर, आपके एक्सपीरियंसेस पर ये सारे क्वेश्चंस होंगे। और इसके लिए खास तौर पर हमने कुछ येस और नो प्रिपेयर किया है, कौन सा हाँ है, किस सवाल का जवाब, किस सवाल का जवाब ना है। आप लोग तैयार हैं अपने सवालों के साथ? जयदीप जी, प्रवीण जी, शिवम जी और दीपक जी,
3: गुड इवनिंग जी।
1: गुड इवनिंग।
4: ये एक बैठे बैठे सवाल याद आ गया, क्या आपको कभी किसी रोल या शो को मना करने के बाद में आपको पछतावा मिला है?
1: कभी किसी रोल या किसी शो?
0: आई अंडरस्टूड। हां,
1: यस और नो? नो नो, बट यू हैव टू शो द ब्लैक कार्ड। यस
0: यस शायद।
4: यस
1: दीपक जी, आप हैं यहां पर अभी?
5: जी
1: ओके, ही इज हियर।
5: गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग
5: साहब। सर सवाल आपसे है कि क्या पहली नजर में प्यार हो सकता है?
1: यस और नो? आई थिंक यस।
0: यस आई थिंक सो। हाँ आई थिंक सो। लोग कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टू फॉल इन लव, मतलब प्यार में गिरना।
5: जी सर,
0: इतना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल नहीं होता, मतलब अपने बस में नहीं होती बात।
5: जी सर,
0: तो आसानी से हो जाता है, लेकिन उसमें रहना, उसको निभाना, ये मर्दों वाली बात है।
1: नहीं, लेकिन एक चीज बताइए आप पहले, ये जो पहली नजर का प्यार जिसको आपने यस कहा है, ये आपको कौन सी उम्र में हुआ था?
0: वो तो बहुत रिसेंटली हुआ।
1: बहुत रिसेंटली?
0: यस आई मीन क्या अभी एक्चुअली हो गए?
1: रिसेंटली तो नहीं है।
0: नो नो, विद माय या इट्स बीन गॉड, इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 इयर्स विद माय वाइफ।
1: यस, इट्स प्लेइंग सेफ।
0: Of course, always safe.
4: Big hands up, Karina.
0: Thank you. Yes, and she is also a huge supporter of the army.
5: Yes, thank you, sir.
0: She's very happy I'm here, and unki taraf se lots of love to all of you.
5: Thank you, sir.
0: Yes.
6: Jai Hind, sir.
0: Jai Hind.
1: Jai Hind.
6: Welcome to Uri, sir.
0: Thank you.
6: सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस बढ़ती उम्र में आपकी फिटनेस का राज क्या है सर? क्योंकि आर्मी में फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कुछ टिप्स बताइए कि आप हमारी आर्मी को भी।
0: भाई मैं अपने आपको ऐसे सिचुएशंस में डाल देता हूँ जैसे जय जवान, जहाँ मुझे पहाड़ों पे चढ़ना पड़े और बड़ी बड़ी मशीन गन्स चलाना पड़े, तो आदमी को फिट रहना चाहिए। नहीं, आई थिंक सबके साथ फिटनेस का दौर चल रहा है आजकल, और एज हम सिर्फ एक नंबर मानते हैं जैसे कहते हैं लोग, और अच्छा खाना खाना, डाइट, हेल्थी खाना खाना, एक्सरसाइज करना और फिट रहना, और ड्रिंक्स पे एकदम कंट्रोल करना।
1: आइए अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और एक और डांस परफॉर्मेंस सैफ सर की एक और फिल्म से यहाँ पर, जिस गाने से आप आज दिन भर डर रहे थे, अब नंबर उस गाने का है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नायक अर्जुन और उनकी टीम को। आइए, बहुत स्वागत है आपका।

0: ओले भी बरस गए, बर्फ भी बरस गई, मुझे लगता है सब बरस गया। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा आपका, थैंक यू सो मच।
1: वेल डन, कांग्रेचुलेशंस।
0: अगला है परफॉर्मेंस
1: जी,
0: और इस परफॉर्मेंस के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करूंगी हवलदार गजेंद्र और उनकी टीम को। आइए सब, वेलकम ऑन स्टेज।

0: सॉरी मैंने आपका गाना बिगाड़ा।
1: अपने
2: बहुत खूब, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच फॉर द एंटायर टीम फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट। दिल चाहता है।
3: थैंक यू
0: सो गुड।
2: तमंचे पर डिस्को परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर इनवाइट करूंगी हवलदार अरुण रोआ और उनकी टीम को। आइए प्लीज।

कमंचे पे डिस्को आपने जो करके दिखाया है अभी, एकदम महफिल को आपने ऐसे रेडी कर दिया है कि जिसके बाद हम नीचे तो नहीं जा सकते, ऊपर ही जाएंगे। तो हम लोगों का हमेशा जब भी ये कार्यक्रम होता है जय जवान का, महफिल खत्म हमेशा आते आते भांगड़े पर जाती है। पंजाब की वाइब के बिना तो पार्टी अधूरी है, है या नहीं है बताइए? हाँ, पंजाब की वाइब के बिना पार्टी अधूरी है, नहीं है? भांगड़ा भांगड़ा देखना है आपको, किस किस को देखना है? मुझे पीछे से जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक मैं बुलाऊंगी नहीं स्टेज पे। थैंक यू सो मच, अगली टीम को स्टेज पर इनवाइट करूंगी। और भांगड़ा परफॉर्मेंस के लिए नायक अजय जी और आपकी टीम प्लीज आइए स्टेज पर।

0: बहुत खूब, आज तो पूरी बॉयज पार्टी हो गई है यहाँ.
1: थैंक यू मैम.
0: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू. बहुत खूब, कंग्रेचुलेशंस. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे.
0: आपका परफॉर्मेंस ने तो एकदम बिल्कुल चार चांद लगा दी हमारे आज की महफिल पर. और आपको मैं देख रही हूँ, आप हर डांस में आपने परफॉर्म किया है.
2: पता था, हम खून में
0: है. चलिए, ये परंपरा आगे भी ऐसी चलती रहे, यही मेरी बेस्ट विशेज है आपके लिए.
1: थैंक यू. बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा.
0: जवानों के बीच में जब आप हों तो उसकी एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि उस पल के लिए, उस लम्हे के लिए, उस वक्त के लिए आप भी जवान हो जाते हैं. तो हमें जवान बनने का ये मौका देने के लिए, इसे मैं यूथ के एंगल से नहीं कह रही हूँ, जय जवान के एंगल से कह रही हूँ, हमें अपने बीच होकर जवान फील कराने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की इस खास अवसर पर, आज इस कार्यक्रम में, इस सफ़र पर हम लेंगे विराम, लेकिन इस स्पिरिट के साथ कि आपके पास जब जब आने का मौका मिलेगा, हर बार आएंगे आपसे नया कुछ सीखने के लिए, आपके साथ नया वक्त शेयर करने के लिए. और सैफ सर,
1: तो जाते जाते आप सबके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, जो आई थिंक आप लोगों के लिए परफेक्ट है. कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं.
0: क्या बात है.
1: Right?
0: And right. That's our Indian Army.
1: Really, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना प्यार मिला आपसे, बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड करने में. All the very best, lots of love from all of us to all of you. Okay? Bless you.
0: Thank you so much. Thank you.
3: Clap.
1: Rolling. Clap. I love this clap. I'm gonna miss it. अगर पट्टी गई तो
4: कैसे जवाब दूँ?
1: Low budget film. Bothering, you can sit on underneath the tree and just direct us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाह मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा प्योर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
9: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
10: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal, on Saturday.
9: The show that sets the prime time agenda.
10: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
9: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
3: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV.
4: Good evening, hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. All right, our top focus at this hour. At the Congress headquarters in Delhi on Independence Day, the version of Vande Mataram was sung. And it triggered a political controversy. BJP leader has filed a complaint against Sonia Gandhi and demanded an apology from her. Descendant of Bankim Chandra Chattopadhyay and BJP MLO Sumitra Chatterjee has also written to Sonia Gandhi seeking an apology and calling the incident repeat of a historical mistake. Union Home Minister Amit Shah also slammed Rahul Gandhi and Sonia Gandhi and said that the nation will never forgive them. BJP has released a video of Rahul Gandhi claiming that Rahul is heard saying, "We don't play the full version of Vande Mataram in the clip." In another video shared by BJP, Sonia Gandhi is heard saying no to Vande Mataram.
5: सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
6: इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दौरान कांग्रेस मुख्यालय में जो हुआ उसको लेकर आपके जो विरोधी हैं बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप बहुत अनकंफर्टेबल थी, ऐसा लगा कि वंदे मातरम को रोकने की कोशिश की गई। कांग्रेस कैसे देखती है इस विवाद को?
7: देखिए, एक तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको इस देश की आज़ादी में कोई रोल नहीं था, उनको कोई मतलब नहीं था। जो आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराते थे बरसों तक, वो सवाल उठाते हैं। और जहाँ तक सोनिया जी की बात है, तो जिस दिन सत्रावसान हुआ था मैं भी था, जो उपराष्ट्रपति जी से औपचारिक जो आदमी मिलने जाता है, चाय पीने जाता है, उसमें मैं भी था। उन्होंने तो कॉम्प्लीमेंट किया था किरण रिजिजू को कि मैं देख रही थी, सो आप पूरा, आपको याद था पूरा, आपने गाया। तो उन कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जिनको प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम है। अगर ये कानून बन गया तो वहाँ भी सब लोगों ने पूरा गाया खड़े होके।
6: तब ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में जब वंदे मातरम गाया गया था तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने उसमें भाग लिया था।
7: सब ने भाग लिया था, सभी पार्टी के सदस्यों ने भाग लिया था। कोई भी कानून आएगा, कानून जब बन जाएगा तो उसकी सबको सम्मान करना चाहिए, उसमें कौन सी नई बात है। और कांग्रेस पार्टी पर कोई इस तरह का सवाल खड़ा करे तो ये तो मजाक जैसा लगता है।
6: इसमें माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं है।
7: इसमें क्या माफ़ी मांगना है, किससे माफ़ी मांगेगा आदमी? वंदे मातरम और जनगण गाने में के लिए कांग्रेस को कोई सिखाएगा?
6: एक आखिरी सवाल, पवन खेड़ा ने कहा कि 1937 में, अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक रेजोल्यूशन है कि सिर्फ दो स्टैंजा गाया जाना चाहिए और कांग्रेस के प्रोग्राम में ये प्रोटोकॉल।
7: इसके कानून बनने के पहले तक तो वही सब लोग आते थे, वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब कोई कानून बन गया तो हम सबको उसका हिफाजत करना चाहिए।
8: इंडिया का पाटने ദേശീയ ഗാനമായിട്ട് ദേശീയ ഗീതമായിട്ട് പോലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഖണ്ഡിതമായി പറയേണ്ട വേളയും AICC ആസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ വരികളും പാടി, എല്ലാ വരികളും പാടുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയും സോണിയാഗാന്ധിയും എല്ലാം കേട്ടുനിന്നു. കോൺഗ്രസ്സിന് അറിയില്ല എന്താണെന്ന് രാഷ്ട്രീയം, അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ രണ്ടാം സ്റ്റാൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം സ്റ്റാൻസ് മുതലുള്ള ഓരോ വരികളും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ ദേവതകളെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നവയാണ്.
4: Well, the Vande Mataram controversy is not a new political controversy. Ever since the formulation of the Indian Constitution, this debate and discussion has dominated, whether it was the Constituent Assembly debates or the politics after it. Well, you know what the latest incident is, what happened at the Congress Party headquarters and the kind of pot shots that the BJP has been taking on the Congress Party. The Congress Party, of course, has defended itself. But let's listen in from the experts. Joining us on the broadcast is Sanju Verma, spokesperson of the BJP. We also have Mr. Sumitra Chatterjee, Bankim Chand's family member and BJP MLA from Bengal. Dr. Nishant Anand, who's the spokesperson of Congress Party with us on the broadcast, and Tehseen Poonawala, political analyst with us on the show. Good evening to everyone. Thank you so much for joining us on the broadcast. Dr. Nishant Anand, I want you to open the debate. The BJP has been questioning you and taking pot shots at the Congress Party and saying that the Congress Party did not allow the full version of Vande Mataram to be played, and in fact accuses Rahul Gandhi and Sonia Gandhi of insulting Vande Mataram. Your thoughts on it? What do you have to say?
9: Hi, good evening to all. See, BJP, Amit Shah, I heard today, he was the one who insulted Dr. B.R. Ambedkar on the floor of Rajya Sabha on December 17, 2024. RSS belongs to an ideology that did not see fit to unfurl the Tiranga till 2002 for 52 years. A man who orchestrated the Delhi police brutalities at Jantar Mantar. Such man is now demanding an apology from the Congress to divert attention away from the real issues of the day and away from these failures. Rahul ji and Congress party clearly said, while the Congress was making Vande Mataram the mantra of India's freedom, with our leaders facing bullets, where were the RSS? RSS was started in 1925, but they have no participation in Quit India movement. They did not do anything for the independence. Now they are asking, they were giving mercy petition to the Britishers, and now they are telling the Congress that what needs to be done. Vande Mataram was started in 1896 session, over a century before the BJP even thought of making it a political issue in 2006. Now, BJP is talking about appeasement. That 1937 CWC resolution on Vande Mataram was passed on that direct advice of Rabindranath Tagore and also supported by Sri Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose.
4: I'm sorry, Dr. Anand, I'm interrupting you, but I want you to answer the question head on, which is that what happened during the event at the Congress Party headquarters? Was the playing, when the Vande Mataram was being played, was it interrupted? Was it disrupted?
9: See, Sonia ji were asking for a chair for Kharge ji. That's why she said it twice, and Rahul ji also answered. And then also somebody came and addressed that issue. The Vande Mataram was played, the complete version was played there. So the point of controversy is just to divert today's important issues of youth and the people that we've been asking for the 3 weeks in
4: Sanju
9: the
4: Sanju Verma, the national spokesperson of the BJP, also with us on the broadcast. Sanju ji, the Congress party says you are merely diverting from the real issues. This is a non-issue and the Congress party doesn't need to prove its nationalism or allegiance to the nation, especially to the BJP.
10: You know, Anusha ji, nice to be on your show after a long gap. You know, I just wish to say a couple of things here. If there is somebody who's engaging in rabid whataboutry, it is the Congress party. Today we are not discussing about RSS's or BJP's role in the independence struggle, so on and so forth. The limited point is this: mudde par discussion honi chahiye, which is the modus operandi of Congress and the Darbari ecosystem. At 1 minute 38 seconds, Sonia Gandhi can be seen saying that she does not want to go ahead with the entire Vande Mataram rendition, to which Mallikarjun Kharge responds by saying, no, no, they have passed some law, they have passed some act, you know. Then she says, this is not our Vande Mataram. Excuse me, Sonia Gandhi, excuse me, Mr. Kharge, excuse me, Rahul Gandhi, there is no such thing as your Vande Mataram versus my Vande Mataram. There is only one Vande Mataram with all the six stanzas that need to be sung now as per the amended Prevention of Insult to National Honours Act, which started way back in 1971, and the act was amended in 2026. But that's not the point. I want to very quickly, 20 seconds, bring to the attention of your audience, Anusha, one very important thing. 2026 Independence Day celebration at the Red Fort, Rahul Gandhi, MIA. 2025 Independence Day celebration at the Red Fort, Rahul Gandhi, MIA. 2026 Republic Day parade celebrations, Rahul Gandhi, MIA. Inauguration of the new Parliament building, despite getting an invitation, Rahul Gandhi, MIA. Kartavya Bhavan inauguration, Rahul Gandhi, MIA. My final point. Do you know something? Rahul Gandhi was also MIA during the oath-taking ceremony

0: recruitment exam in Punjab
1: that?
0: Under paper leak cloud, opposition tears into state government.
1: Please give me 60 seconds. Yes. I'll answer all that. First of all, she referred to pharmacy exams. There's a difference between paper leak and cheating. The counterintelligence unit of Punjab and Punjab police, they busted a cheating racket. And there's no court finding, not a single observation. I challenge you here on your show. Main maafi maang ke jaunga yahan pe agar aap mujhe court ke order mein dikha dein ki kahan court ne ye kaha hai ki cheating hui hai. Secondly,
0: yahan leak hua hai, wo cheating keh rahe hain, leak nahi hua hai.
1: Haan. Leak nahi hua. Secondly, you referred to PSSB exam. Here's the High Court order which said High Court clears Punjab senior assistant exam rejects paper leak claim, maafi mango. Secondly, you referred to PSTET. PSTET, the official order of Punjab said it was not a paper leak. Printing mistake in question paper. Maafi mango. Abhi mangna maafi yahan pe.
0: Nahi, wo to yahi kahenge na. Wo thodi na kahenge. Official order will not say ki haan ji leak hua hai. Wo to kahenge ki printing mistake hai.
1: Matlab aap media ke report pe vishwas karoge. जो मीडिया आज की डेट में सरकार की दलाली कर रहा है आप उसकी रिपोर्ट पे विश्वास करोगे?
0: सेकंडली अभी
1: आपने कहा पीएसटीटी, रुकिए ना,
0: खुद मीडिया की रिपोर्ट लेकर के आ रहे हो, सबको दलाली की बात कर रहे हो,
1: क्योंकि वही मीडिया की रिपोर्ट आपको भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. द पीएसटीटी विच यू आर रेफरिंग टू, जस्ट अ मिनट, द पीएसटीटी विच यू आर रेफरिंग टू, that PSTET exam, it was not a paper leak, it was administrative lapse on one of the official, that's why to ensure transparency we cancel the exam.
0: Okay,
1: to aapko maafi mangni chahiye ya Punjab ke bare mein jhoot bolne ke liye?
0: Okay,
1: without any credible evidence you are leveling baseless allegations.
0: Okay,
1: for that you need to apologize.
0: Okay, very
1: quickly, agar aapne himmat hai to hame dikhao court ka order jahan likha
0: hai. Theek hai, very quickly Pratik Bhandari respond to this. Are bhai, let him respond.
1: Aap jhoot bolke theek hai karoge, ye theek nahi hai.
0: I'm very happy that you've got your 30 second Twitter clip which all of your followers can upload now.
1: It's about exposing you.
0: दिखा दिया उसको, धूल चटा दी उसको, मिट्टी में मिला दिया. I congratulate.
1: झूठ बोला ना
0: सर. अरे सर, पेपर
1: ओके दिखा दो ना सर, मुझे गलत साबित कर लो. 30 सेकंड की क्लिप आप बना लेना.
0: If you will give me,
1: आप बना लेना 30 सेकंड की क्लिप.
0: Advocate Anmol Pawar, you know, you are saying it wasn't a leak, it was an administrative lapse. Now, tell it to the students who had to suffer because of the administrative lapse, and I'm sure they'll feel very happy कि अरे leak की वजह से नहीं cancel हुआ, administrative lapse हो गया था.
1: आप बता दो कि paper leak और administrative lapse एक ही होते हैं क्या? इन्हीं students को बता दो.
0: ठीक है.
1: और नहीं होते तो माफी मांगो.
0: फिर exam तो cancel हुआ ना? Exam तो cancel हुआ ना?
1: Paper leak हुआ क्या?
0: Exam तो cancel
1: हुआ क्या? Paper leak नहीं हुआ ना?
0: Paper leak नहीं हुआ.
1: झूठ बोलो और चलिए ठीक है. क्या तरीका है?
0: Paper leak की वजह से
2: आम आदमी पार्टी से आप कोई सच की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि केजरीवाल जी अपने बच्चे की सर की झूठी कसम खाए तो किसी चीज को नहीं मान सकते.
1: मोदी जी कहते थे ना भ्रष्टाचारियों को आने नहीं दूंगा.
2: मैं केजरीवाल जी की क्लिप, मैं केजरीवाल जी की क्लिप प्ले कर देता हूँ, सुन लो.
0: ओके, लेट्स नॉट मेक दिस पर्सनल अबाउट व्हाट ही सेड.
2: क्या बोल रहे हैं जो कह रहे लीक हुआ है?
1: मैं भी प्ले करूंगा.
2: अभी इतना फड़फड़ा क्यों है आम आदमी पार्टी के?
0: फर्स्ट यू प्ले फॉर 30 सेकंड्स, देन तब तक आप क्यों करके रखिए, दोनों चलाइए.
3: एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टेस्ट का, कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया. आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर,
2: कल पेपर में गड़बड़ी हुई, लीक हुआ, हमने इन्विजिलेटर को हटाया, पेपर कैंसिल कर दिया. अगर लीक नहीं हुआ तो पेपर क्यों कैंसिल किया भैया?
0: पर लीक नहीं हुआ ना, गड़बड़ी हो गई, लीक नहीं हुआ.
2: अब देखिए आम आदमी पार्टी के डिक्शन में अलग होता है, कुछ नहीं समझ सकते. शीशमहल में बैठते हैं इनको नहीं बच्चों का पता.
0: अनमोल पवार
2: सुनिए, मैं हाईकोर्ट का लाया
0: हूँ. चलाइए अनमोल,
2: हाईकोर्ट का लेके आया हूँ. हाईकोर्ट सुनिए, हाईकोर्ट का एक अलग ऑर्डर है. हाईकोर्ट ये कहता है,
1: हाईकोर्ट ये कहता है,
2: ही इन्फॉर्म हाईकोर्ट से
1: अगर पेपर लीक लिखा होगा
2: तो द एंटायर प्रोसेस ऑफ फार्मेसिस्ट,
1: पेपर लीक दिखाओ कहां लिखा हुआ है,
2: ऑफिसर एग्जामिनेशन,
1: पेपर लीक कैंसिल तो माफी मांगो,
2: इंटरस्टेट रैकेट, इंटरस्टेट रैकेट
1: बस किया है. पर आदमी पेपर लीक और चीटिंग में फर्क होता है?
2: ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी है कि इनके अंदर भी लीक हो जाता है, भ्रष्टाचारी पार्टी है.
0: ओके, गिव इट बैक.
2: फार्मेसी लीक, एडीओ लीक, रिक्रूटमेंट लीक, लीक लीक लीक, इसीलिए पंजाब के अंदर 1600 प्रिंसिपल्स में से 900 की पोजीशन थी वैकेंट. दैट इज द ट्रुथ, दैट इज द ट्रुथ. 20% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पंजाब, इज द हाईएस्ट इन द कंट्री.
0: ओके, लेट हिम रिस्पोंड देन. आई थिंक
1: अभी एक सेकंड मैं ले रहा हूं जवाब, एक सेकंड रुकिए. अभी भाजपा के प्रवक्ता ने इससे पहले कहा, जब भाई ने सवाल पूछा, बहुत जायज सवाल था, इन्होंने कहा हमारे यहां प्रॉब्लम नहीं होती. अरे उत्तर प्रदेश में

0: तुम्हारे पेपर लीक हो रहे हैं वो तुम्हें नहीं दिखता, तुम्हारे हरियाणा में पेपर लीक हो रहे हैं वो तुम्हें नहीं दिखता, तुम्हारे गुजरात में पेपर लीक हो रहे हैं वो तुम्हें नहीं दिखता, वो विजुअल हटा दिए उन्होंने, कहो दिखाएं, विजुअल हटा दिए उन्होंने।
1: अरे आम आदमी पार्टी ने जैसे अखबार को बंद करा था पंजाब के अंदर, अपने मीडिया से रिपोर्ट करिए, ये लगता है राजनीति छोड़ के, राजनीति छोड़ के जो है
0: अभी इन्होंने कहो दिखाएं, नेशनल लेवल पे जो है पेपर लीक हो रहे हैं वो इनको प्रोड्यूसर बनने वाला है, 150 साल जो है इनके राज में,
1: ये सच्चाई है, मेरा निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी जो है आपका प्रवक्ता छोड़ के जा रहा है, इन्हें माफ मांग प्रोड्यूसर बने।
2: ओके ओके, वेट वेट वेट वेट फॉर द माइक,
3: पद्मजा
2: वेट वेट, then I'm coming to you.
4: In India, we want equal standards of accountability. That is the question, sir. That is the question. आपके schools के, in your schools in Punjab also, your political leaders, they post on Twitter several things about the schools and the bad conditions of schools in UP. As you also, you took a flyer and you show कि देखो आपके यहाँ भी ऐसा होता है. Sir, where is the equal standards of accountability? Why don't you guys do something about your schools also?
0: Sir, let me tell you, we are the first government in the history of this independent India
1: which education
0: under whose regime, under whose regime, okay. 25% of the budget was educated by
1: education minister and Sharaf Amini was a similar person.
0: Ab aap inhe nahi rokoge,
1: to the only government minister of education minister
0: hai, aap inhe nahi rokoge na, ye dar gaye,
1: ye Google bhi keh raha hai ki leak aur cheating dono exam fraud hi hote,
0: sachai sunni padegi na isliye dar gaye. The reality is, देखिए लगातार ये डर गए, हमेशा ऐसे ही डर जाते हैं, ये हमेशा ऐसे ही डर जाते हैं, जिसके पास कुछ होता नहीं वो इंटरप्ट करता है।
2: आंसर आंसर,
0: देखिए मैंने आपको बताया किस तरह हमने पंजाब को नंबर वन पे लेके आए शिक्षा के क्षेत्र में ड्यूरिंग दिल्ली गवर्नमेंट ऑल्सो, ड्यूरिंग दिल्ली गवर्नमेंट व्हेन आम आदमी पार्टी वॉज इन गवर्नमेंट इन दिल्ली, वी एंश्योर्ड दैट दिल्ली कम्स नंबर वन एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न।
4: सेकंडली, आर यू इवन अवेयर अबाउट द ड्रग अब्यूज इन पंजाब, योर मिस्टर केजरीवाल, ही सेड वेरी पर्टिकुलरली, ही सेड वन थिंग, हमको पावर में ला के दिखाओ, हमको पावर में लाने के बाद देखो कैसे हम सारा ड्रग हटाते हैं। सर, इफ यू डू हैव इवन रियलाइज दैट इवन आफ्टर कमिंग टू द पावर द ड्रग सिचुएशन इन पंजाब हैज इवन गॉटन वर्स, देयर इज नथिंग टू
2: रिस्पोंड। ओके, रिस्पोंड, देयर इज समथिंग,
0: कैन आई रिस्पोंड, कैन आई रिस्पोंड, कैन आई रिस्पोंड, कैन आई रिस्पोंड, आप जो है ये बदतमीजी है,
1: इसे कहते बोलना जेंजी का शब्द बदतमीजी है।
0: फरवरी 2026 का आप अपना ट्विटर हैंडल देना, अभी चुनौती दे रहा हूँ आपको मैं, 40,000 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर किए हैं, 90,000 से ज्यादा ड्रग एडिक्ट को अरेस्ट किया है, और इनके बीजेपी के सीनियर नेता जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने कहा है कि पंजाब में ड्रग की स्थिति बेहतर हुई है, पंजाब में ड्रग की कमर तोड़ी है हमने, और आप अपना ट्विटर हैंडल देना, आई विल टैग यू।
1: इतने लोगों को एफआईआर करेगा एक्सपोज यू ब्रदर, एक ही शो पे आम आदमी पार्टी सब पे एफआईआर कर रही है,
0: डोंट नो द रियलिटी एंड आई विल प्ले द वीडियो राइट हियर, आई पंजाब इज राइट नंबर
2: 1। ओके अनमोल जी, यू टेक 30 सेकंड्स टू प्ले द वीडियो, लेट्स टेक अ क्विक क्वेश्चन फ्रॉम दिस जेंटलमैन, देन हर्षवर्धन त्रिपाठी एंड देन अनीश। यस
5: मैम, माय नेम इज अंशुल सिंह। सर, पंजाब इज स्टिल नंबर वन इन ड्रग यूज इन होल इंडिया सर।
2: ओके फाइन, जस्ट अ सेकंड, हर्षवर्धन
6: से उन्होंने जो अभियान चलाया 31 दिसंबर तक पहली बार 31,000
1: कुछ भी जनरेट करने का ऐसे दिखाते हैं, वैलिडेट करो वीडियो को, वैलिडेट करो वीडियो को, वैलिडेट करो वीडियो को, वैलिडेट करो वीडियो को, वैलिडेट करो वीडियो को।
0: मनोहरलाल पुरोहित लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो रहे हैं,
1: फेक एआई जनरेटेड वीडियो है, फेक एआई जनरेटेड वीडियो है। अच्छा, ये फेक एआई जनरेटेड
2: truth is that that right now what you saw over here pretty much mirrors what we are seeing in our parliament as well. The only difference is that the parliament doesn't even function. When it does, this is what we see happening. Harshvardhan Tripathi, then Anish Gawande, then I'm coming right back to you. Harshvardhan ji,
7: पद्मजय, मैं उम्मीद करता हूँ कि अनमोल को गुस्सा नहीं आएगा, कांप रहे थे गुस्से से, ठीक
1: नहीं है।
7: नहीं, एक मिनट, एक मिनट,
2: clarify this. What is the fake news?
0: I've made this video.
2: One second. What is the fake news? I'm coming back to you. I will come back to you. Just a second. You will have to hear what he's saying. What is the fake news?
1: He said that the Punjab LG said that Punjab has done excellent on drug prevention.
0: I challenge you. Yes, I'm right.
1: It's a fake news.
2: Why do you say that?
0: Video.
2: What has the LG said?
1: Because when I said and what put it on air and said it's no, he has put a fake news.
0: I challenge this guy. He's a liar. He's a liar. He's lying on Apple Leaks. He's lying in the
2: Punjab. What is your question? Young lady, yes.
3: You can't rely on AI.
1: अरे मैं एआई पे नहीं, मैं तो उस पर कर रहा हूँ, खुद गवर्नर के स्टेटमेंट पर रिलाय कर रहा हूँ, मेरे भाई गवर्नर के स्टेटमेंट पर रिलाय कर रहा हूँ। इधर आ जाओ, पैनल में आ जाओ, तुम भी पैनल में आ जाओ।
2: ओके ओके, यू डोंट हैव अ माइक। यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन?
8: गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम महक। सर, आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आई जेन्युइनली एग्री टू व्हाट अनीश सर सेड कि ताली दोनों हाथों से बजती है। सो व्हेन आर वी प्लानिंग टू लिसन टू द वॉइसेस दैट हैव बीन अनहर्ड? व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव टू हु डिड सुसाइड? व्हाट अबाउट द पेरेंट्स हु हैव बीन क्राइंग? व्हाट अबाउट द kids who have been working hard, who have been going out for drop years? When, what about the protests? What about the students who are getting killed? And what about now? When are we expecting the change? That is from all the panelists and especially to the central government, because they are in power.
2: Anish,
9: when politics becomes a circus, the people of India suffer across party lines. And this is where the BJP strives to ensure that they do not provide accountability. I support the students of Jharkhand. When they went for a march and they were tear gassed and water cannoned, it was wrong. But was it correct for the Delhi police to do that on the students of Delhi? If it was not correct in Jharkhand, is it not correct in Delhi? And if it is not correct in Delhi, why has accountability still not been arrived at? How many police officers have been sacked? Do we know that there has been a pellet gun used or not, and what the responsibility is? How did a lathi reach a young woman's neck? A neck, to break a carotid artery and land her in the ICU? Listen, the Home Minister must answer this question. If I am conceding that the Jharkhand protests are genuine and that the water cannoning was wrong, then what is the cowardice of the Home Minister today? I am ashamed to have him as my Home Minister because he does not answer.
2: All right, so the Home Minister should answer for what happened in Delhi. Who should answer for what happened in
9: Jharkhand?
2: The
9: Home Minister of Jharkhand must answer for what happened in Jharkhand.
2: Which is also the Chief Minister.
9: Absolutely.
2: The Home Minister is the Chief Minister.
9: The Chief Minister must answer for what has happened in Jharkhand, and I support you in this demand.
2: But you are literally the first person who is asking for the Chief Minister to answer for the water cannon.
9: Absolutely.
2: Nobody has raised that issue in Parliament till
9: today. But young people have raised this.
2: Who has raised it?
9: Because Parliament has not been allowed to function.
2: But nobody, even outside. Today everyone is talking about the Home Minister's answer. Nobody has asked Hemant Soren to answer.
9: I congratulate the ABVP for standing with the students of Jharkhand. I do not know why they do not stand with the students of Maharashtra in the TET paper leak.
2: Okay, very
9: this
2: quickly.
9: Kind of hypocrisy I cannot understand.
2: Harshvardhan Tripathi, Harshvardhan ji, then I'll come.
7: Padmaja, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई सो नहीं रहा है, जगे हुए सोने के एक्टिंग कर रहा है, तो उसको आप जगा नहीं सकते।
2: कौन सा?
7: और अगर कोई गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट कह दे कि हमारे यहाँ कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है, तो ये तो कहिए कि बड़ा कृपा की, नहीं तो अनमोल पवार इसके बाद कहते हैं कि हम डिफेमेशन कर देंगे।
0: बिल्कुल करेंगे जी।
7: बाकायदा अब पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात, नाराज मत होइए, पूरी बात होने
0: दीजिए।
7: और अनमोल पवार झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, पूरे
0: एविडेंस दिखाओ, मुझे गलत सर
7: कॉम्प्रोमाइज हो गया।
0: एविडेंस दिखाओ,
7: जहां चीटिंग हुई बिना पेपर लीक के,
0: दिखाओ। अरे चीटिंग और पेपर लीक में फर्क नहीं पता आपको?
7: और अगर ये जानकारी
0: चीटिंग और पेपर लीक में फर्क नहीं पता इस उम्र में?
9: सर, मैं अग्री करता हूँ, मुझे एक ही सवाल का जवाब चाहिए। सर
7: वहाँ खड़े हैं जहाँ सरकार बेशर्मी पर आमादा है,
9: सर
7: जहाँ सरकार
0: आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए
7: और झूठ बोलने
0: युवाओं के लिए, आप युवाओं को गुमराह कर रहे हो।
2: शर्म आनी चाहिए,
0: शर्म आपको आनी चाहिए। हर्षवर्धन जी,
2: व्हेन इट कम्स टू द कंपैरिजन,
0: पेपर लीक में आपको फर्क नहीं पता, आपका चश्मा लग रहा है, इससे वरिष्ठ आदमी हो आप भाई, गजब बात है, गजब बात है।
2: अनमोल जी प्लीज,
7: अमृतसर के एक
0: क्योंकि आपको युवाओं की चिंता नहीं है,
7: प्रदीप एक मिनट,
0: क्योंकि आपको युवाओं की चिंता नहीं है, राजनीति के लिए आप देश में
7: ठीक है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को पंजाब सरकार ने क्यों हटाया? बच्चों ये ध्यान से सुन लो, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर भुल्लर साहब को क्यों हटाया?
0: नहीं एविडेंस दो,
7: अरे जवाब दो ना भाई।
0: नहीं नहीं भागो,
7: अभी मैं जवाब मांग रहा हूं। भाग रहे हो तुम, भाग रहे हो, बेईमान सरकार है,
0: साबित करो,
7: बेईमान सरकार है,
0: साबित करो, साबित करो,
7: नशे में झूठ बोल रहे हो,
0: झूठ बोल रहे हो, झूठ।
2: आई थिंक इट इज क्वाइट अपेरेंट,
0: झूठ बोल रहे हो, झूठ सबूत दिखाओ।
2: it is quite apparent to everyone watching over here and watching at home on television also. When Mr. Pawar is a slightly calmer person, I'm going to come back and ask that question. Very quickly ask your question.
10: Sir, आम आदमी पार्टी से अभी आप ही बोल रहे हैं कि चीटिंग और पेपर लीक में अंतर होता है। सर वैकेंसी कितनी आती है? 300 वैकेंसी आती हैं। अगर चीटिंग से 300 वैकेंसी भर गए तो लीक और उसका क्या अंतर होगा? आप इसका जवाब दीजिए मुझे।
7: सेम भ्रष्टाचारी।
0: देखो अरे तुम महाभ्रष्टाचारी हो, तुम महाभ्रष्टाचारी हो,
2: उनको जवाब देना।
0: महाभ्रष्टाचारी सारे भ्रष्टाचारियों के लिए
11: ये पूरे पैनल से मेरा
0: जवाब दिए देने देंगे।
11: ये पूरे पैनल से मेरा क्वेश्चन है।
0: कहो इन्हें देखो आप मुझे बताओ, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो भाई
11: जी,
0: आप मुझे बताओ पेपर अगर कोई यहाँ पे आता है पेपर देने और उसके पास कोई पर्ची पकड़ी जाए और फिर उसका पेपर कैंसिल कर दिया जाए, पंजाब पुलिस काउंटर इंटेलिजेंस मिलके उसे रोक दें, तो क्या वो पेपर लीक होता है? पेपर लीक होता है जब पेपर देने आओ उससे पहले पेपर आउट हो चुका हो, लोगों के पास हो। चीटिंग आप ये कह रहे हो कि चीटिंग अगर कोई कर रहा है तो उसे करने दे, चीटिंग पकड़े ना, ये कह रहे हो आप?
10: ये बताइए सर,
0: बताओ आप
10: अगर
0: ये कह रहे हो आप,
10: अगर वो चीज प्रूव नहीं होती,
0: रोका है हमने चीटिंग करने वाले को। आप
10: चीटिंग क्या बात कर रहे हैं सर? पैसा लेकर के चीटिंग करवाते हैं?
0: आप मुझे बताओ ना,
10: पैसा लेकर के सर चीटिंग करवाते हैं?
0: चीटिंग रैकेट ब्रस्ट किया है, चीटिंग रैकेट ब्रस्ट किया है हमने।
2: बोलो बोलो बोलो,
0: भ्रष्टाचारी महाभ्रष्टाचारी महाभ्रष्टाचारी। तुम्हारे राज में लगातार पेपर लीक होते हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है।
2: डोंट स्पीक इन द
0: प्रेस, मुंबई दही जम जाती है।
2: व्हाट इज इट दैट
0: पेपर लीक तो मुंबई दही जम जाती है। मध्य प्रदेश पेपर लीक में मुंह में दही जम जाती है, राजस्थान पेपर लीक में मुंह में दही जम जाती है, बिहार पेपर लीक में मुंह में दही जम जाती है। वहाँ के बच्चे बच्चे नहीं है तुम्हारे, झूठे आदमी माफी मांगो।
2: ओके
0: भ्रष्टाचारी माफी मांगो।
2: आई थिंक ही हैज अ रेलेवेंट पॉइंट हियर,
0: बात करने वाला
2: माफी मांगो। रेलेवेंट पॉइंट हियर व्हेन क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड टू हिम ऑन पंजाब, the same questions and he has got all of these printouts.
7: Accept to kare na, Punjab to manne ko taiyar nahi hai. Paper
0: do na, evidence do,
7: evidence
0: do, kagaz do,
7: evidence sarkar,
0: aap wahan jhoote aadmi ho, aap wahan jhoote aadmi ho, bhajpa ki aap pe
7: bhagwan ka bhala
0: hai, ye aadmi din raat jhooth
7: bolta hai,
0: sab ko uthai bol rahe hai,
7: kamaal hai,
2: kamaal hai. Ask you Mr. Pawar,
0: evidence ke keh do ki bhajpa ke pravakta ban ke yahan baithte hain, ye bhajpa ki dalali karte hain, to kya wo theek hoga?
2: High court mein aap bina bina kisi ka let me ask you a simple question.
0: Credible evidence ke main kaise kahunga?
2: Let me ask you,
0: you are the biggest corrupt,
7: acting like a
0: hooligan. You are the biggest corrupt,
7: he is a hooligan.
2: Let me ask you a simple,
0: the future of the students of
2: Mr. Pawar, Mr. Pawar,
0: you have destroyed the future of the students of this country.
7: Punjab ke log
0: aapki besharmi, aapki besharmi bhi khatarnak hai. Maa jhoot bolti hai,
2: on behalf of the students,
0: ghamandi aadmi, sharam aani chahiye aur maafi mangni chahiye. Tumhare jaisa besharam aadmi maine nahi dekha jisne yuvaon ka bhavishya barbaad kiya.
2: Sir, on behalf of the students, let me ask you one question and one question only. Have any exams been cancelled in Punjab because of irregularities, yes or no?
0: Tell me, first tell me, because initially you started with the fact that there were 6 paper leaks in Punjab. Aapne ek bhi evidence nahi dikhaya. Aap high court order mein nahi dikha paaye kahan paper leak hua. Ek single evidence nahi dikhaya. To the contrary, I showed evidence. Pehle maafi mango ke paper leak nahi hua.
2: Now
0: pehle
2: let me repeat my question. I understand the demands of social media.
0: डेफामेशन
2: के बाद अब कहीं मेरे ऊपर अच्छा चलो एक बार और मिल करके भाईचारे से एक बार और फिर से सवाल पूछते हैं, क्या पंजाब में कोई भी एग्जाम इरेगुलरिटी की वजह से कैंसिल हुआ है, हाँ या ना?
0: आपने 6 बार झूठ बोला, आप माफी मांगोगे हाँ या ना? हाँ या ना बताओ, आपने झूठ बोला माफी मांगोगे हाँ या ना?
2: चलो
0: बताओ, मांगोगे क्या माफी?
2: आई थिंक इट इज अपेरेंट एवरीवन वांट्स टू जंप इन, प्लीज प्लीज ओके, आई विल गिव 30 seconds to everyone to respond, but I really want to give the floor to them. This young man here. This young
12: sir,
2: man.
12: My name is Hussain. Irrespective of any leaks that happened or any irregularities in exam, it has resulted in a scenario where lives of students are affected. Has Punjab government of Punjab taking any proactive steps to curb storm it? No. Because taking any deterrent step doesn't ensure that paper leak or cheating won't happen again. We have to take any proactive steps. But the government has not taken any proactive step at the end.
0: No, it was a proactive step that in this pharmacy paper, we caught a cheating racket, we busted a cheating racket. Otherwise, it would have resulted in a paper leak. Secondly, the point is that these are mere allegations without any credible evidence. That's why High Court has time and again said that there's not a single paper leak. And no one on the panel has been able to show a single evidence. That's
2: okay,
0: the reality.
2: 30 seconds,
0: and we must look... Every student, we must look at every student the same way, whether it's the student of Uttar Pradesh, whether it's the students of Rajasthan, Madhya Pradesh, but no Godi media asks them question that why regularly paper leaks are happening in their states. We have proved that not a single paper leak in last 4 years, but there have been 40 paper leaks in Uttar Pradesh, 40 paper leaks in Madhya Pradesh, 40 paper leaks in Rajasthan. Aap inse sawal karo.
2: 30 seconds.
7: Punjab ne bahut kamal ka kaam kiya hai.
0: इसीलिए नंबर वन पे है। इसीलिए नंबर वन
7: बोलने नहीं देना चाहिए।
2: प्लीज मिस्टर पाल।
1: देश की गुंडागर्दी को ऊपर नीचे कर दूंगा भाई ज्यादा किया।
2: You spoke for a good 2 minutes. Did I stop you? Please.
7: देश की सारी सरकारों को पंजाब से सीखना चाहिए। आपके यहाँ करप्शन हो, आपके यहाँ पेपर लीक हो, आपके यहाँ चीटिंग हो, एक्सेप्ट मत कीजिए। लोग चिल्लाते रहे,
0: सवाल मत कीजिए।
7: पंजाब
0: मत पूछिए।
7: पंजाब में करप्शन हो, पंजाब में ड्रग
0: सरकार से सवाल पूछने,
7: पंजाब में ड्रग अभी बढ़ता जाए, पंजाब में बच्चों का करियर खत्म हो जाए,
0: आप सबूत मत दिखाइए,
7: किसान खराब हो जाए और पूरी तरह से गुंडागर्दी करते हैं।
2: टाइम आउट, 30 सेकंड्स प्रदीप भंडारी, 30 सेकंड्स।
1: हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री, प्लीज गूगल एंड फैक्ट चेक मी, इज इन पंजाब मोर देन 20%। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, फूड बॉम्ब एग्जामिनेशंस व्हिच हैव कैंसल्ड इन पंजाब, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट फुल एग्जामिनेशन कैंसिल, नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट फुल कैंसिल, पीएससीबी क्लास 12 फुल कैंसिल, लीक से वेपन थाउजेंड्स ऑफ सफर पाए, फेक न्यूज़ नंबर 3, ही सेड दैट ओनली चीटिंग हैज हैपेंड इन हाई कोर्ट, देयर इज नो चीटिंग व्हिच हैज टेकन प्लेस, द हाई कोर्ट सेड इट्स अ लीक,
0: एक भी एविडेंस या पेपर लीक हुआ
1: व्हिच हैज टेकन प्लेस,
0: कोई पेपर लीक नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं
1: अरविंद केजरीवाल को,
0: लगातार झूठ बोल रहे हैं, आप भ्रष्टाचारी लोग हो, आप झूठ बोल रहे हो, वोट का आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी का वोट,
2: टाइम आउट, टाइम आउट,
12: चाहे सरकार की, चाहे सरकार पक्ष हो
2: सर,
12: चाहे सरकार पक्ष हो और चाहे विपक्षी पार्टी हो, तो आप ये बताइए सर,
2: मिस्टर पवन, दिस गाय, ओके सर, दिस इज अ यंग मैन, लिसन टू
0: हिम, तुम हो,
1: ही इज अ ट्रेंड गुंडा,
0: तुम हो, तड़ी पार तुम्हारा गृहमंत्री रहा है,
1: केजरीवाल एंड
0: तड़ी पार तुम्हारा गृहमंत्री रहा है,
2: दीपक हैज अ क्वेश्चन,
0: माफी,
2: दीपक हैज अ क्वेश्चन, दीपक हैज अ क्वेश्चन,
1: नहीं ये तो सड़क छाप,
0: माफी, तुम मांगो,
12: विपक्ष हो, उससे ये सवाल है कि आपकी जहाँ पे सरकारें होती हैं, आप जहाँ पे भी होते हैं सरकार में, आप तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, क्या आप करते हैं, कमेटी बना देते हैं, रिजिग्नेशन मांग लेते हैं, हो जाता है सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स बोल देते हैं, कभी पेपर लीक बोल देते हैं, आप त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, दोनों सरकार से बोलना चाह रहा हूँ, आप विपक्षी पार्टी हो चाहे आप सरकार पक्ष वाले हो, कोई भी हो, करते हैं क्या आप लोग, तो आप ये बोलिए ना, आप ये बोलिए ना, आपने कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, आपने कितने को जेल भेजा, आप भी बताइए मुझे, आप सरकार पक्ष से
0: हैं,
2: he is asking an important point, just a second, because this has been asked to me again and again, look, when it came to JPSC, the entire commission has been disbanded there, you had the chief of the JPSC who has now been arrested, now the government of Jharkhand will ask you that when it came to the NTA, why wasn't the head of NTA arrested if there were problems over there?
1: Because Pradeep, the head of the NTA did not leak. It was 6 invigilators who leaked the question paper and they're all arrested. And this is what the Supreme Court has also said. No. It's fair. Point number one. My point is simple. The standards of accountability should be similar. You asked for the resignation of the Delhi of the education minister. Why are you not asking for the resignation of the education minister, home minister and chief minister of Jharkhand, Hemant Soren? Why is not a single member of opposition gone there? That is the reality. When it came to us, we took accountability. It cannot be when Punjab has become the lead capital of
0: what
1: the country and there is not a single leak which has taken place. And agar inko lagta hai nasha Punjab mein nahi hai,
0: what about Bihar ka dope? What about Maharashtra?
1: Bhagwant Maharashtra
0: ka batao, samajh
13: Maharashtra. Padmaja, main ek simple sawal poochunga. पूछूंगा नहीं
2: उनको कराया ना मैंने आप बोलते जा रहे हैं अनीश
9: प्रदीप इज वेरी गुड एट इंस्टिगेटिंग पीपल टू अवॉइड आंसरिंग क्वेश्चंस इवन दो इज माय वेरी गुड फ्रेंड बट आई विल से दिस वन सेकंड नाउ इन दिल्ली इट वॉज यंग पीपल एंड द ऑपोजिशन that demanded the resignation of Dharmendra Pradhan ji. It was not the BJP. Did we ask the BJP ki Modi ji aap istifa mango? Khud ke liye ya Dharmendra Pradhan se? Did we say JP Nadda ji please demand the resignation of Dharmendra Pradhan? Obviously not. Jharkhand mein opposition mangega. BJP mang rahi hai. So very good. So why will the government demand a resignation from its own minister? That's not what's expected from the government. That's what's expected from the opposition. We've now spent 40 minutes of this debate talking about Jharkhand and Punjab. I appreciate that. Why have we not talked about the paper leaks in Maharashtra and the TET? Why has that standard not extended to BJP rule states? The problem also is that when an accountability question is asked, you are met with a counter and I want to ask the final question always. Pellet gun kisne chalai? दिल्ली में पैलेट गन कैसे चली
13: और झारखंड में
9: झारखंड में पैलेट गन नहीं चली है
13: चली झारखंड में चली मैं वीडियो दिखा दूं आपको ये वीडियो
2: ओके वेरी गुड आई वांट टू गेट अ फ्यू
9: मोर क्वेश्चंस अ वेरी बिग एक्यूजेशन हैज बीन मेड दैट पैलेट गन्स हैव बीन यूज्ड इन झारखंड देयर इज नो प्रूफ
2: ओके शुड बी सब्सटेंशिएटेड प्रदीप भंडारी व्हाई यू डिग आउट दैट वीडियो बिकॉज़ जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स प्रदीप भंडारी हैज सेड दैट पैलेट गन्स वर यूज्ड इन झारखंड And if that is indeed the case, then it should be substantiated. Please show a video and proof.
9: Further demand over here. If the police in Jharkhand has access to pellet guns, Anish. Then there should be a cause of national Anish. Shame. No, Anish, it has to be substantiated.
13: This is
9: Listen to me. It has been documented. Yashovardhan Jha Azad, one of the country's foremost IPS officers, has filed a PIL in the court expressly saying the government should be asked to ban the pellet gun if pellet gun has been used in Jharkhand.
2: Okay, look, now that is a larger debate.
13: I have one demand.
9: I have one request. If the government thinks pellet gun use is bad, If the government thinks pellet gun use is bad, will the government of India support Yashovardhan Jha Azad's PIL in the Supreme Court
2: that is
9: and ban pellet guns?
2: I don't want to sidetrack into that debate.
13: Whenever the Congress used pellet guns on the Indians was wrong.
9: Wrong. Okay.
13: So you were in power. You should apologize.
9: Okay. I apologize.
2: Anish,
9: yes,
2: hold on a second. Just to give context
13: of our viewers, using pellet guns
2: the use of pellet guns was started in 2010 in our country by the then UPA government when P. Chidambaram was home minister. Subsequently, it has been used in Kashmir. It has been used in Manipur. It has now been used in Delhi and the Supreme Court Kashmir said in the course of this, in the course of this hearing.
13: Okay,
2: I'm going to end it there. I only have the last 10 seconds, and I really want just a second. I want to have this one gentleman because he's been trying very hard to speak. Only in 30 seconds, say what you want to say. 30 seconds.
14: Ma'am, my question is to Anmol, sir.
2: Just a second.
14: Sir, my question is to you. Like, आप कह रहे हो कि वो paper leak नहीं था, cheating थी. अगर वो cheating भी थी, तो उसकी accountability कौन लेगा? और हर line के बाद आप liar बोल के सबको end कर देते हो. ये भी चीज़ मेरे को ठीक नहीं लगी personal base पे.
15: देखिए, आप अभी भी मुझे गलत साबित करवा
14: रहे हैं. मैं आपको गलत साबित नहीं कर रहा. सर, मैं आपको
15: evidence के बिना आप नहीं कह सकते ना.
14: सर,
15: without any credible evidence, without any, देखिए, he is acting like a fool now. So you are acting like a fool now. Now Bhandari is acting like a fool.
13: I think.
15: क्योंकि ने बताया कि झूठ पकड़ा जाएगा
2: you know,
15: भाई तुम्हारे से बड़ा गुंडा बनना है महाभ्रष्टाचारी हो इनसे पूछो क्या सबूत है इनके पास
2: look,
15: बिना
2: look,
15: सबूत के आप कुछ भी कह दो वो माना नहीं जाएगा
2: You've got PR people watching right now.
15: You've got सबूत के कैसे मान ले?
2: You've got
15: High Court के order में नहीं दिखा पाए paper leak काम में.
16: ये ब्रह्मांड है.
15: High Court के order में नहीं दिखा पाए paper leak काम.
2: You've got people watching right now.
15: No.
2: He'll
15: start.
2: Please. You've got people watching right now, and I think what they want is for answers to be given to some very real concerns, and which is why after the end of these 40 minutes, even if you could not get a proper conclusion, I think we can end with the hope that in the next session of Parliament, we will see cogent discussion, not finger pointing, not mudslinging, because this is not what happens in Jharkhand or what happens in Delhi. It will happen across our country. It will happen to your children tomorrow. It will happen to these kids sitting over here. And then you won't be able to run away by pointing fingers and shouting. For the time being, though, for sparing your time, thanks very much, all gentlemen, and this wonderful bunch of young people for joining us. Thanks for watching.

0: Injured staffers are said to be stable and are receiving medical treatment.
1: अमलेश राय जी जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई

0: strong disapproval. They say that they stand in solidarity with the Nalsa student and demand an apology with the Bar Council of India. You remember this entire controversy when the Bar Council of India had given a notice that none of the Nalsa students are going to be enrolled as advocates because they boycotted the presence of the Chief Justice of India at the convocation. Following massive outrage that erupted from the bar, from the members of the bar, from the members of the judiciary and also from the students, the Bar Council of India within an hour withdrew the order. And now yet again we have another student body which is boycotting this. Ritu with us on the broadcast. Ritu, give us more details.
1: Well, of course, as you rightly pointed out, you have the law students here in Bengaluru who have taken up this whole matter as well up in the arms and have been up in the arms demanding that this is at any cost not fair at all. They've been in fact demanding. They in fact have placed various demands including that of an apology as well, withdrawal too again. But however, needs to be seen because for the convocation as an event, how would really things pan out in the coming days? That is something that we'll have to wait and see. Back to you.
0: Thank you, Ritu, for getting us all those details. We'll of course keep coming back to you for more. A gunfire incident was reported at Varanasi Airport after a passenger's licensed pistol accidentally went off during a security check, injuring two security staffers. According to police, the passenger identified as Kamlesh Rai from Azamgarh was travelling to Mumbai and had already declared his licensed 7.62mm pistol. During the standard frisking and security check by CISF and airline staff, a round in the chamber reportedly went off accidentally, injuring two ground staff employees. Both injured staffers are said to be stable and are receiving medical treatment.
2: कमलेश राय जी जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे. इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल उसको पहले से डिक्लेयर किया है. जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार सीआईएसएफ और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए दो ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं.
3: घटना बस वही हुई है कि डिक्लेयर्ड वेपन को हम लोगों को स्क्रीनिंग करना होता है. उसी में पैसेंजर ने बोले कि इसे ये अनलोडेड कंडीशन में ये देख लीजिए. और देखने के लिए वो किए तब तक में गोली छूट चुका. उनको ये पता नहीं कि मालूम था या नहीं था वो पैसेंजर जाने, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो अनलोडेड है या अनलोडेड है. वो अनलोडेड कंडीशन में दिखाने के लिए वो ट्रिगर दबा दिए.
4: घटना सर यही हुई कि हम लोग स्क्रीनर है आई क्लास में, तो हम लोग का वेपन आते हैं तो डिक्लेयर वेपन उजी पे हम लोग करना है. बट पैसेंजर भी आए थे, एयरलाइन वाले भी आए थे. पैसेंजर ने जस्ट टोटल फिजिकल जो भी है वो ओजी के डेस्क पे रख करके वो करने लगे. पहले उन्होंने मैगजीन निकाला, देखा प्लस उसमें लोडेड थी. उन्होंने ट्रिगर नीचे की तरफ दबा दी. उन्हें लगा कि मे भी नहीं हो या क्या पता वो गुस्से में किए हों कुछ भी, इरीटेट हो करके कि हाँ इसमें एमिनेशन है, ये लोग इरीटेट करते हैं, ये भी हो सकता है. उन्होंने जस्ट नीचे में तुरंत विद इन सेकेंड ही ट्रिगर दबा दिए.
0: All right, let's cut across to some latest news coming in. Annamalai says few TVK ministers have started to get percentage on tenders. Says he has audio of the few ministers saying they won without giving money to voters, but we gave money for votes. So we need to 2-4%. He has urged the chief minister to give focus on delivering non-corrupt governance.
5: மறுபடி ஆரம்பிச்சிருக்கு பார்த்து எடுத்தா இருக்கும். கரப்ஷன் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் கரப்ஷனுக்கு எதிராக இருப்பது உண்மைதான், அதையும் நாம் பார்க்கின்றோம். டெண்டர் பெரிய பெரிய டெண்டர்ல வாங்கல, இப்ப சில அமைச்சர்கள் இப்பதான் வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அவங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம வந்துட்டாங்க. சில அமைச்சர்கள் சொல்றாங்க, எங்கிட்ட ஆடியோவே இருக்கு, அவங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம வந்துட்டாங்க. தம்பி நாங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்து வந்தோம் ஒரு 2% கூட, தம்பி 3% கூட, தம்பி 4% கூட. இது முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் கவனத்திற்கு இப்பவே கொண்டு வர்றங்க ஐயா. ஒரு வருஷம் கழிச்சு நாங்க பிரச்சனை பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க அதை உங்களுடைய அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் அதை அறிவுறுத்துங்க.
0: An Annamalai's We the Leaders makes its second big show of strength in Chennai, but this time the message is political change over blame and a new political path. Annamalai spoke about his resignation from the BJP, meeting with Amit Shah, and then also delivered a message to Vijay's rivals. To Vijay's rivals, the newly sworn in Chief Minister Annamalai said that the government must be given a year's time to deliver and added that he's in no rush to topple the incumbent government. Annamalai says his politics is not about convenience but principles, insisting he chose Tamil Nadu over Delhi despite Amit Shah's offer. Rejecting BJP's B-team tag, Annamalai says his decision to stay in the state proves where

0: know, taken up this whole matter as well up in the arms, and have been up in the arms demanding that this is at any cost not fair at all. They've been in fact demanding, they in fact have placed various demands, including that of an apology as well, withdrawal too again. But however, needs to be seen, because for the convocation as an event, how would really things pan out in the coming days? That is something that we'll have to wait and see. Back to you.
1: Thank you, Ritu, for getting us all those details. We'll of course keep coming back to you for more. A gunfire incident was reported at Varanasi Airport after a passenger's licensed pistol accidentally went off during a security check, injuring two security staffers. According to police, the passenger identified as Kamlesh Rai from Azamgarh was travelling to Mumbai and had already declared his licensed 7.62 mm pistol. During the standard frisking and security check by CISF and airline staff, a round in the chamber reportedly went off accidentally, injuring two ground staff employees. Both injured staffers are said to be stable and are receiving medical treatment.
2: कमलेश राय जी, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे. इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल, उसको पहले से डिक्लेयर किया है. जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार सीआईएसएफ और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी, तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए दो ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं.
3: घटना बस वही हुई है कि डिक्लेयर्ड वेपन को हम लोगों को स्क्रीनिंग करना होता है. उसी में पैसेंजर ने बोले कि इसे ये अनलोडेड कंडीशन में ये देख लीजिए, और देखने के लिए वो किए, तब तक में गोली छूट चुका. उनको ये पता नहीं कि मालूम था या नहीं था, वो पैसेंजर जाने, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो अनलोडेड है या अनलोडेड है. वो अनलोडेड कंडीशन में दिखाने के लिए वो ट्रिगर दबा दिए.
4: घटना सर यही हुई कि हम लोग स्क्रीनर है आई क्लास में, तो हम लोग का वेपन आते हैं तो डिक्लेयर वेपन ओजी पे हम लोग को करना है. बट पैसेंजर भी आए थे, एयरलाइन वाले भी आए थे. पैसेंजर ने जस्ट टोटल फिजिकल जो भी है वो ओजी के डेस्क पे रख करके वो करने लगे. पहले उन्होंने मैगजीन निकाला, देखा, प्लस उसमें लोडेड थी. उन्होंने ट्रिगर नीचे की तरफ दबा दी. उन्हें लगा कि मे बी नहीं हो, या क्या पता गुस्से में किए हों, कुछ भी इरीटेट हो करके कि हाँ इसमें एमिनेशन है, ये लोग इरीटेट करते हैं, ये भी हो सकता है. उन्होंने जस्ट नीचे में तुरंत विदिन सेकंड ही ट्रिगर दबा दिए.
1: All right, let's cut across to some latest news coming in. Annamalai says few TVK ministers have started to get percentage on tenders. Says he has audio of the few ministers saying, they won without giving money to voters, but we gave money for votes. So we need to 2 to 4%. He has urged the chief minister to give focus on delivering non-corrupt governance.
5: மறுபடி ஆரம்பிச்சிருக்கு, பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும். கரப்ஷன், முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் கரப்ஷனுக்கு எதிராக இருப்பது உண்மைதான், அதையும் நாம் பார்க்கின்றோம். டெண்டர், பெரிய பெரிய டெண்டர்ல வாங்கல, பல அமைச்சர்கள் இப்பதான் வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அவங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம வந்துட்டாங்க. சில அமைச்சர்கள் சொல்றாங்க, எங்கிட்ட ஆடியோவே இருக்கு, அவங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம வந்துட்டாங்க. தம்பி, நாங்கள ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்து வந்தோம், ஒரு 2% கூட தம்பி, 3% கூட தம்பி, 4% கூட. இது முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் கவனத்திற்கு இப்பவே கொண்டு வர்றங்க ஐயா. ஒரு வருஷம் கழிச்சு நாங்க பிரச்சனை பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க, அதை உங்களுடைய அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் அதை அறிவுறுத்துங்க.
1: An Annamalai's We the Leaders makes its second big show of strength in Chennai, but this time the message is political change over blame and a new political path. Annamalai spoke about his resignation from the BJP, meeting with Amit Shah, and then also delivered a message to Vijay's rivals. To Vijay's rivals, the newly sworn in chief minister, Annamalai said that the government must be given a year's time to deliver, and added that he's in no rush to topple the incumbent government. Annamalai says his politics is not about convenience but principles, insisting he chose Tamil Nadu over Delhi despite Amit Shah's offer. Rejecting BJP's B-team tag, Annamalai says his decision to stay in the state proves where his political priorities are. After recent remarks against Trisha and Chief Minister Vijay's family, Annamalai has drawn a line at personal attacks, condemning defamatory remarks against women and families. He says Gen Z and millennials are looking for a different kind of politics.
5: அதற்கும் வீத லீடர்ஸ் அந்த அரசியலுக்காக நம்மை நாம் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த பல அரசியல் மேடையில் நடிகை திட்டுறது, நடிகரை திட்டுறது, ஒருத்தருடைய தந்தை தாயை பத்தி பேசுறது, குடும்பத்தை பத்தி பேசுறது, அப்பாவை பத்தி பேசுறது, அதெல்லாம் போச்சுங்க ஐயா, அதெல்லாம் போச்சு. சட்டசபையில் அநாகரிகமாக வம்பு கிழித்து ஒரு பெண்ணை நயவஞ்சகமாக தவறான வார்த்தையில சித்தரிக்கிறது, அதை வெளியே வந்து சொல்லுவாங்க. எங்க தலைவரை பாத்தீங்களா, எப்படி சொன்னாரு பாத்தீங்களா, எவ்வளவு டபுள் மீனிங்கோட சொன்னாரு பாத்தீங்க. அந்த அரசியல் போச்சுங்க ஐயா, போச்சு. 1980க்கு பிறகு பிறந்தவர்கள் ஜென்சி மில்லேனியல் 65 கோடி பேர், அவர்கள் பிடிக்கலீங்கய்யா.
1: All right, some other latest news coming in. Chief Minister Vijay has strongly condemned the killing of 3 suspected poachers in Karnataka's Chamarajnagar, calling it heartbreaking incident and the Forest Department's explanation unacceptable. The TVK chief has demanded an honest high-level probe punishment for those responsible for killing of Tamils residing in villages in Chamarajnagar. Cutting across to my colleague Vijay Gopal Muralidharan joining us from Chennai. Vijay, give us more perspective. What has the CM said?
6: Well, Anusha, that's right. CM C. Joseph Vijay has expressed shock over the incident. He also strongly condemned the incident. He also urged the Karnataka state government to form high-level committee to probe the incident. He also urged the Karnataka government to take appropriate steps to avoid such similar incidents in future. He also expressed the disappointment over the clarification given by the Karnataka Forest Department by saying that it is unacceptable clarification from the Karnataka state government. He strongly condemned the shootout of 3 alleged poachers, suspected poachers in an alleged shootout. He said those three are Tamilians and those are all innocent lives. Remember, even other political parties also have strongly condemned the incident. They are demanding, they are strongly condemned the Karnataka state government over the incident. Tomorrow, as we have a legislative assembly session, we can expect the issue will be discussed inside the legislative session also, assembly also, Anusha.
1: All right. Thank you, Vijay, for joining us on the broadcast and getting us all those details. And as my colleague was just pointing out, that the 3 suspected poachers who have been shot dead in the forest of Chamarajnagar by the Karnataka Forest Department, the incident has come to light from the Shagya Forest area of the Kaveri Wildlife Sanctuary. Chief Minister D.K. Sivakumar has taken cognizance, ordered a magistrate-level inquiry. He's assured that adequate compensation will be given to the victim's family. The deceased have been identified as Anthony Swami, Peter and Kumar. They allegedly fired at the Forest Department officials. They were killed in the crossfire. Chief Minister D.K. Sivakumar from Karnataka has ordered appropriate action. Tamil Nadu leader M.K. Stalin has demanded Tamil Nadu government to take action, citing that those killed are residents of Tamil Nadu. PMK Chief Ambumani Ramadas has also criticized the killing and demanded a CBI probe.
7: ನನಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ನನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದೂಕು ಸೀಜ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಂಸ 2 ಚೀಲ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೀಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಸೀಜ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಥರ ಆದರೆ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಉದ್ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ
8: ಕೊಡ್ತೀನಿ. It's necessity after that. So it is directly the bullet gone to heart and neck. This is also suspect. So that's why BJP demand judicial inquiry for this, not magistrate inquiry. That is by the assistant commissioner. He is also officer. How can he give the wrong report to the government? So we ask the judicial inquiry.
9: The outside it looks like a very cold blooded murder, therefore it is unbecoming of the forest officers to take law into their hand. and killing people.